साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, कर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्दे।

कहो नानक हर हर गुण गाए, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। करम पूम में बोहो नाम, पूरन होए तुम्हारा काम। फल पावे मिटे जम त्रास, नित गावे हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उर्धार।

सदा अविनाशी गुर के बचन कति जम फासी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन जिन दीनी शोभा वड्याई किस प्रभ को आस कहते आई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम ते आवो रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवे निध

चाहे हो गुरु उपदेश मने महले हो जाको राम नाम लिव लागी कहो नानक सो तन वड पागी गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल महा पुनीत पय सुख सैल वदे पाग पाया साध संग पार ब्रह्म सो लागो रंग हर हर नाम जपत जन तारियो अगर सागर गुर पार उतारे रहाओ कर कीर्तन।

सब जाए, गुरपुर सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौरी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लख थरे।

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतर सियाना, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

दा पंजवा अनेक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ ज्यो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का लाहस तूख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होवे सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जाके हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनेक रूप देख नहीं पता।

त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए।

कृष्णा आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आगे अरदास। बौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बहु रंग माया बहु विद पेखी, कलम कागज सियान पलेखी, मेहर मलूक होए देखिया खान, ताके

अखेड़ गिरत राजन की लीला, मन ना सुहेला पर पंच हीला, कर कृपा संतन सच कया, सर्व सुख एहो आनंद लया, साध संग हर कीर्तन गाये, कहो नानक वड़पा।

बहुर बहुर कुआहु लपटेरा पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा होन न पाये राम के दासा कौन सो विद जित राम गुण गाए कौन सो मत जित तरे ए माए राव जो पलाई सो बुरा जाने साच कहे सो बिखे समाने जाने नाही जीत अर हार इहो वलेवा साकत संसार जो हला हल सो पीवे बौरा अमृत नाम जाने कर कौरा साध संग के नाही नेर लख चौरासी परमता फेर एक जाल पहाए पंखी रस रस को

जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच धर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत वड पाग।

हर गुण दावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बहु न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुरु पे हैं सहाय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा मन मंदर।

कवन बापारी जाका उहा विसाओ, नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाई लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोर है।

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जिन

संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेत तो हूं मैं मारी। सतगुर संग नाही मन डोले। अमृत बाणी गुरुमुख।

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक

अब मत बिनसी दुष्ट बिगानी, जब ते सुनिया हर जसानी, रहाओ सहज सुख आनंद निधान, राखन

सो सुखदाता जे नाम जपावे पर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग पावे।

पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते ए मत पाये रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुर पूरे राखे दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला तमिवा गुर प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औषध पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत

माया मगन ना कछु मोह है, उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के कंकार, आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान, आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस

बिचर आ गया पिचर पोगे पोग जले न पाये राम स्नेह किरत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हट जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाये शील संजम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी ग्वारे री महला पंजवा हम तनवंत।

सतगुरु अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर चाहिए।

को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाका तह दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका सब किस ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा कहाँ ब्यापे सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे जाके दिन सो मन से फरमा ताके कछु नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरनामा कहो नानक ताके सगल निधाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन में खाना गुर प्रसाद किने विरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिसले पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला ताकि सुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हर्ष अनंत सोग नहीं दिया सो कर गुरु नानक।

आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं काको लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ, सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोईना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, किसका सब किस जिसका।

नाहे हर सा प्रीतम कर मन मीत प्राण आधार राखो सब चीत रहाओ। रे मन मेरे तू ताको सेव आद पुरख अपरंपर देव किस ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जासी प्रीत।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, साकी माई काको बाप, नाम

राजयोग हर कै मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म किस पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नासे सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एकस्यो जाका मन राता विसरी तिसे पराई ताता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्ताया सुख विश्राम पाया गुण गाए सम मिटिया मेरी हति बलाए रहाओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द प्रम पौ नसिया करण हार नानक मन बस।

चरण ठाकुर के मार्ग कावो, पलो समो सिमरन की बरिया, सिमरत नाम तय पार उतरिया, रहाओ नेत्र संतन।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सोहे ताको माया अगर न पोहे मन तन मुख हर

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए राओ, हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताके बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप,

और मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुखीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपै नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेतत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ, मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण पासा, दुख नाठे सुख आए समाए, कील न परी जा गुर फरमाए, इस पुनी पूरे गुर मिले, नानक के जन

सगल रोग का दिन स्या खाओ। सहज सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल।

सर मन में लेख रव रया सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गौरी महला पंजवा तै में रचियो सब संसारा तिस पौ नाही जिस नाम अधारा पौ ना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना रहाओ सोग हरख में आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभु पाना अगन सागर महाव्यापे माया से शीतल जिन सतगुरु पाया।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सचरास, गौड़ी महला पंजवा। कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

ਸਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ।

जो कुछ वर्त है सब तेरा पाना, हुक्म बूझे सो सच समाना, कर कृपा दीजे प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु बिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौरी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर ते जन तरे नानक जाको नगर करे गौड़ी महला पंजवा हृदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल तारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत देखो तत रह।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सो लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगह बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल थल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिक मुख अमृत सुनावे, जमपुर बांदा चोटा खावे, अनित पर्दे में कमा

औखद मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कहो नानक अतल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै सहाई मान मोह खोए गुर परम तेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

कर कृपा प्रभ लय निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए, सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातपत सागर संसार, प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनस बंधन तोरे नहीं जाहे, सिमरत नाम मुक्त फल पाए, उकस सियानप किसके कछ नाहे, कर कृपा नानक गुण गाहे। गौड़ी मैला पंजवा, हाथी पाई हर को नाम, विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये, पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार, पाव सागर चढ़ उतरे पार, साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख न होए, प्रेम भगत पद गुणी निधान, नानक दरगे पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल तल मैयल पूरन हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा के सिमरन जम नहीं डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नाश, आशा मान तान तन एक, साचे साकी मन में टेक, महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे देहात। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मूचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किल विख नसे, साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुटियो भिक संसार, कर कृपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ शरणाई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर गाते, कह पंजन प्रभ मन ना बसाही, दरपत दरपत जन्म बहुत जाही। रहाओ जा के हृदय बसियो हर नाम, सगल मनोरथ ताके पूरन काम, जन्म जरा मृत जिस वास, सो समरथ सिमर सास गिरास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बार राख्यो हृदय समाल, कर आए गोविंद ले नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग। रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, शोभा सुरत नाम भगवंत।

0: पूरे गुरु का निर्मल मंत चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेक जीवे प्रताप, गौड़ी महला पंजवा। तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही। हर बिसरिय दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे। सोवड पागी निचल थान, जह जपिय प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा।
1: जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मानिया प्रब का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अप

घोल महारस हर अमृत की जय। रहाओ निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संगते गोष्ठ होए।

साज तूर कर सुड मन जाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल न उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत, मन बच क्रम।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए पद

न जले, हर संगराते माया नहीं चले, हर संगराते नहीं डूबे जला, हर संगराते सुफल फला, सब कह मिटे तुम्हारे नाए, एकक संग हर हर गुण गाए, रहाओ हर संगराते मिटे सब चिंता, हर सो सो रचे जिस साध का मंता, हर संगराते जम की नहीं त्रास, हर संगराते पूरन आस, हर संगराते दुख न लागे, हर संगराता अंग निजागे, हर संगराता सहज कर वसे, हर संगराते परम पौ नसे, हर संगराते मत उत्तम होए, हर संगराते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग गई बलाए, रहाओ, नेत्र पुनीत पे खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की चीनी आप सहाये, सुख पाया लग

जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आराधे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे। गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरु हृदय बसाया, गुरु गोविंद।

नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उभरे सब कोए, करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ। अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई, रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौरी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत, द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ कर

सारे सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम मा रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत।

सर्व कल्याण सुख सच पावे रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिजले काहू एक लिव लागी, जिन हर पाया सेवड पागी। ब्रह्मादित सनकादित चाहे, जोगी जति सिद्ध हर आहे, जिसे प्राप्त सो हर गुंगा है। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, वद पागी हर

को संत मिले वडपाजी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिटियो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण गहो पूर।

है कोई संत मिला वे नेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनित पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सादर जन्म जन्म को जात बहोरा। अनद सुख पेटत।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हूँ मैं पाई माया मो सबो जग सोया क्यों परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त दिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई। जिसका ग्रोह तुम दिया ताला कुंजी गुर सो पाई अंत उपाव करे।

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंक बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोह तुमते तीरज पाया संति मंत दियो मोह निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते तेहो धर्म कहाँ से आया रहाओ एक महल तू हुए अठारो एक महल निमानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बखता एक महल खल होता एक महल तू सब कुछ ग्राहज एक महल कछु न लेता। काश की पुत्री कहाँ करे बकरी खिलान हारो जाने जैसा पेट करावे बाजीगर ओ कैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा।

जैसे महल राक्ष तैसे रहना, क्या यो करे बिचारा। जिन कुछ किया सोई जाने, जिन ए सब विद साजी, कहो नानक अप

जो मोहयो उन मोहनी बाला उससे कटे नाही रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ मार्ग प्रभ को

सुहेले, सर्व सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले। बरन नासा को तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी, जन मरण को

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिसे सब किछ जुग में तातिया नाम निधान सब नवतन निर्मल एहो नानक हर तन खातिया। गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो।

प्रवरासे पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में तेज किछ नाही एक जन कई महलाख करोरी जा कह ही है प्रगट प्रभ हुआ हम जन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन के संग संगो

ईंट ऊंट प्रभ तुम समरथा, सब कुछ तुम रहे हाथे, ऐसा निधान देहो मोको, हर जने चले हमारे साथे, निर्गुण आरे को गुण की जय, हर नाम मेरा मन जाते, संत प्रसाद नान खर पेटे, मन तन शीतल त्राके।

पयो प्रगास सर्व उजियारा गुरु जान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन सत्या अनकह ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे खाओ गवायो जो सो प्रसन्न

तै मंद खंड हर ताको नाम जपी जय रे। रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे। जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे। कोट पतित उधारे खिन में करते बार न लागे रे। दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे।

परम सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ महा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राखे पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

लख 84 जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहु में रही हर साध शरण नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाय नीत नीत हर सेवी है सास सास हर त्याय रहाओ संत संग हर मन वसे दुख दर्द अनेरा प्रम नसे संत प्रसाद हर जाति है सो जन दुख ना व्यापी है जाको गुर हर मंत्र दे सो उबरिया माया अगन के नानक को।

तू गुर प्रसाद कर राज योग, हर रस जिन जन चाखिया, ताकि कृष्णा लाखिया, हर विश्राम निध पाया, सो

गहीर साध संगत मिल हर रवे हैं से गुणी गहीर राव जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निज सिद्ध जो जाने हर पद तनी किछ नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ ऐसे है रे खसम हमारा छिन में साज सवार नहारा काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानुक पया जो नाही सो लो रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए।

हरिया रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिया रहाओ जो ते सास दास मन लेता ते ही गुण गाइए जो हो दयाल सतगुर अपना ताए मत बुद पाइए मेरे मन नाम ले जम मन ते छूटे सर्व सुखा सुख पाइए शेर स्वामी सतगुर दाता मन वंचित फल आइए नाम इष्ट नीत सुत करता मन संग तुहारे चाले

सुंदर नारी अनेक प्रकारी गृह भिकारी बुरा पला नहीं सुजी है, बुरा पला नहीं सुजी है। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण नहीं गाया मन बिछे ही मैं लुजी है। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे।

अब दुखन पंथ पयान रहाओ, सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस है काल, कर सेवा तू साध की हो काती है जम जाल, होम जग तीरथ किए दुख हो में बदे विकार, नरक सुरग दोए पुंचना हो।

सुख रे। हर्ष शोक हान मृत दुख सुख चित संसार गुर मिले राव। जौ लो हो किस सोचो चितवो तौ लो दुखन परे। जो कृपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे। जेती सियान कर्म हों किए तेते बंद परे। जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये। जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे। मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे। कोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो। त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ। मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो। बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो। निरपो पै संत प्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो। जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो। साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

चल थिया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी भूख तृष्ण सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर्मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिपद अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पय बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, मां पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहां स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मन मोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की सूरा।

संग कुमार मैं करे आनंदा जियो वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जियो पेख दर्शन इहो सुख लई है जियो चरण पखार करी नित सेवा जियो पूजा अर्चा बंदन देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकुर पह कही है जियो इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप करिया जियो इहो अजर नानक सुख सही है जियो गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन विच प्यारे जियो मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो सदा तेरी शरणाई जियो जिस मिले मन जीवे पाई जियो गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो प्रभ को सद बल जाई जियो एहो निधान जपै वट पागी जियो नाम निरंजन एक निवलागी जियो गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो आठ पैर गुण गाया जियो रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो हर तन रास सच

कहाओ। जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज। पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप। तत्ती वाव न लगई सतगुर रखे आप। गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजनहार। गुर पुछे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा। रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र। हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे। क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे है जीविये पव जल पई है पार। मेरे साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात। नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सा बात। गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ। जिंदु तू मीठे हर गुण गाओ। सच्चे सेती रतिया

साजन बंसो मित्र सो हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे, माल खजाना त्यो कर हर के चरण निदान, नानक जाच

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर शोक ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कठन है किन्हों गुरुमुख जाना, गौड़ी महला नामा। साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

राम शरण आए गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ पूत मीत माया ममता से ए विद आप बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो चूठो इव जग देखता उठतावे, फुगत मुकत का

आदो एहो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बसत है, याते फिर ना रहाई, रहाओ कठन क्रोध काटनी के तीतर जे

जन नानक हर पय दयाला तो सब विद बन आई गौड़ी महला नावा। साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ। राव पतित पुनीत दीन बंद हर

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सुहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उलट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रात्यो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पई ज्योति माए समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न फूलो न परम फुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमुख सह समाना गौड़ी ग्वारे री महला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकस सच शब्द निशाने राज द्वारे शोभ सुमाने चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारे क्यों कीमत पाए रहाओ कर में अमृत तप कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप वड्याई दे नील अनिल अगन इक थाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहत गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आँखों कैसा सागर डूगर निरपो ऐसा मुए को कहो मारे कौन निडरे को कैसा डर कवन शब्द पछाने कीने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त इक नाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई।

नारी पुरुष सब आई लोए राव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मो को एक बुझाया एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार शब्द पचाता एको हुक्म वर्ते सब लोई एक से सब ओपत होई राह दोवे खसम एको जान गुर कै शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वरन मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे सा साचा मुक्त फेर क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार है पंच मार साच पुरधार है रहाओ जिसके अंतर साच वसावे जोग जुगत की कीमत पावे राम सत एको गृह उद्यान है करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक पिछला मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे पैर अच रहे ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम सुखाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करनी सार जब तब संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौरी महला पहला हिमा गही व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापे ना जम दोखं मुक्त पाए प्रभ रूप न रेखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बार सोए रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे अंधन जागे सच विवलावे सो जोगी मेरे मन पावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर नहीं केवल निरपो ना हो अनाथ नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बार एको जाने गुर के शब्दे आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दिसे तो आस निराशा काम क्रोध बिख भूख पे आसा नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सत सोई दर्शन देख पई मत पूरी अखट मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर रसारा सत करनी अब अंतर सेवा मंत्र तास्या अलख अपेवा जय जय देखो तै तै साचा दिन बूझे जगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु कहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीने सो तत विचारे साच हृदय सच

जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभु सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्व बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्व निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार असारी बिन गुरु पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुरु अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाख दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीश समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत शैत बाहो मद कीट में खासा हरनाखस ले नखो विदाता दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगार।

जन को दुख पचे दुख होई। जन में जय गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया। इक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई। राम ना छीनिया अपनी पत खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई। बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए। नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला। सोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो। बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो। बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला। लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला। नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अत प्यारी। बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली। एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली। हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे। बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो। ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो। खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा। बिन गुर शब्द ना सवरस।

प्रणवत नानक शरण तुम्हारी। गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे। पाय मिले सच साचे फसरे, ऐसा राम भगत जन होई। हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है। दुर्मत अग्न जगत पर जा रहे, सो उबरे गुर शब्द विचार है। प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना। तृष्णा रात तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी। क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी। पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए। गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे। काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई। पर पर पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा। बिन रस राते मन बौ नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा। ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता। गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना देखे पावे। वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे। तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख। रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर। नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम। अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम। वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला। दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी मैला पहला हौ मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हौ हौ करत नहीं सच पाई है, हौ मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हौ मैं कर राजे बहुत आवे, हौ मैं खपे जन्म मर आवे। हौ मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हौ हौ कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेसी है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हौ मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं कर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकद्दम।

मन का सूतक दूजा भाओ, परमे पूले आवो जाओ, मन मुख सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव, सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला की जा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा साथ द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विच्चों हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किस कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवें सेवड पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जम काल ने

परम फुलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन कवन नासी।

पावन हारा मर्ज मैं फिर वारो वारा अंधे गुरु ते परम न जाई मूल छोड़ लागे दूजे पाई बिका माता बिख माए समाई माया कर मूल जंत्र पर माए हर जियो विसरिया दूजे पाए जिस नजर करे सो परम गत पाए अंतर साच बार साच वरताए साच न छपे जे को रखे छपाए ज्ञानी बूझे सह सुबाए गुरुमुख साच रहा लिव लाए हों मैं माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए सतगुरु दाता शब्द सुनाए तावत राखे ठाक रहाए पूरे गुरते सोजी पाए आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर न कोई नानक गुरमुख बूझे कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अंदिन हृदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ हृदय सुख पया प्रगास गुरमुख गावे सच गुण दास दासन दास नित होवे दास गृह कुटुंब मैं सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावे सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए जा हृदय वस्या सच सोए गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होए हुकम पचाने बूझे सच सोए तू करता मैं अवर न कोए तुझ सेवी तुझ ते पत होए कृपा करें गावा प्रभ सोए नाम रतन सब जग में लोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वड पागी हो मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास जब हृदय

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत मेलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर ते नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चलई विच विस्ता पहे पचन तिहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए सतगुर सेवन सो सोहणे होमे मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलने सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे

मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम दंड दे सजाए मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाए मन कर हला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन कर हला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगे पहनाया हर आप लिया गल लाए मन कर हला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन कर हला विचारिया विचार देख समाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमुख हृदय निहाल मन कर हला गुरु गोविंद समाल रहाओ मन कर हला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल मन कर हला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल मन कर हला वड पादिया हर एक नजर निहाल आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल मन कर हला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दास करी दयाल मन कर हला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल गुर ज्ञान खड़ग हत तारिया जम मारे अड़ा जमकाल अंतर निधान मन कर हले प्रम पवे बार पाल गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन कर हले हर रंग सदा समाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल हम पंखी मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल वड पागी

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाती जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करावन सब किछ एक है आपसे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना ने

मैं पागे जास जपत वस आवे पंचा जास जपत हृदय अमृत संचार जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगे सिजे जास जपत कोट मिटे अपराध जास जपत हर होवे साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सह निवास जास जपत ए अग्न न पोहत जास जपत एहो काल न जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाता जास जपत मुश्किल कछु न बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत ए निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरी अखंड कीर्तन तिन पोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यो संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ताके आत्मे होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ताके होए जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है जेता सुनना तेता नाम जेता पेखन तेता ध्यान सहजे जागन सहजे सोए सहजे होता जाए।

जा के सहज मन पया आनंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच कर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रव सस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अरपेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

जो इस मारे सो नहीं चलता नी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल किरपा निज, इस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुरदुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म विचारी, गौड़ी महला पंजवा। हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता नहीं चल चीत, हर स्यों जुरे ना व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वडे वडे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुने, तिसके संग खिन में उदरे, कोट मजन जाके।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत। जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर। जाके चाकर को नहीं दान जाके चाकर को नहीं बान। जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा। जाके ऊन नाही काहू बात एक है आप अनेक है पात। जाकी दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल। ना को चतुर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा। जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस पागा। गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी। त्यों जीवे साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिनस लाख।

साकत बेसुआ पूत ने नाम बिन सिमरन जैसे सीग छतारा। बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हरकाया साकत लोभी बंध न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया। गौड़ी महला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैज रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ। गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिये जम की फासा गुर के बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा तिस गुर को सिमरों सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरे

मां अगन ते हाथ दे राखा किस गुर के गए टोवो पानी जिस गुर ते अकल गत जानी किस गुर के गृह पीसो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीत जिन गुरमो को दीना जियो अपना दासरा आपे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार कल कलेश पे परम दुख लाता कहो नानक मेरा गुर समराता गौड़ी मैला पंजवा मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए जो कुकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथ्या सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत न लावे कोट कर्म कर तो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना आराधा चोर की न्याई जमपुर बादा लाख अडंबर बहुत विस्तारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी मैला पंजवा आद मद जो अंत निवा है सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूरन प्रतपाले रहाओ बिन सतनाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रया समाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता पाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिरक काटी गोपाल कर अपना लीनो नगर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण त्यान सर्व सुख भोग पूरन पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बार संग

पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया से ही होए भगत जिना कृपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया मैं तक्की और संता ले हो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किसी ना है हर पूर पंडारिया चौ दिस जपिए नाव सूख सवारिया मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ियो पूजा प्रसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया जन नानक लगा रतन अम

रहन हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहे हो, कोट मदे किने गुरमुख लयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत तरयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो क्या, गुर चंदन शीत लायो।

अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाभ तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्श हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध ना जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी, दयाल पुर

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे।

सुनना प्रभु जियो एक लड़ी बनमाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सातन मिले।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोय न पावे हाथ निग्रह बे बाणे नानक सच कर।

तेरा मैल सच्चा जियो, नाम सच्चा वापारो, नाम का वापार मीठा, भगत लाहा अंदिनो, तिस बाज वखर कोई न सूजे, नाम लेवो खिन खिनो, परख लेखा नदर साची, कर्म पूरे पाया, नानक नाम।

सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है। जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है। हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए। नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए। तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए। सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए। विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ। हर गुण सारी ताकंत प्यारी नामे तरी प्यारो। नानक कामन ना प्यारी राम नाम गलहारो। तन एक लड़ी जियो बिन ना प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन

नानक कामन सदा रंग राती, हर जियो आप मिलाए। ता मिलिए हर मेले जियो, हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए, यूं मिलिए माए, पासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया।

चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर

अन ना पानी, पानी अन ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवे मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया करे आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर के सह सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरुमती रंग लाए, तेहो शरीर पूर सत परिया, गल काई पाप कमाए, गुरुमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे।

लिए प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीतम अत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे सच शब्द सिगारे हों मैं मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुरु बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अंदिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौनिद पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहता जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यो मरिए किन में दाम नाम किल विख काटे पए पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पए मनूरा स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वा पारा राम नाम वा पारा अगमा पारा गुरमती तन पाईए सेवा सुरत भगत के साची विच्चों आप गवाईए हम मतहीन मूरख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए आप सराय करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहारे।

पाए सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना सब सुहाए नाम क्या है सदा सुख पाए नाम रहे लिवलाए नामे उपजै नामे बिनसे नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाये आपे ले लवाए ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए

नानक माया का दुख तदे चूके जा गुरु सबदी चितलाए। मन मुख मुकुट गवार तेरा जियो शब्द मन ना वसाए। माया का परम अंग तेरा जियो हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए। मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले। गुरचरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए। नानक नाम

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरै पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर है फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंधेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ते हम जैसा मेरे मन अंध भया जियो वजी वादाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूत ठाउ गवाया अनहतवा जे वजह कर में फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

आवे जा साध संत इकत्र हो गए तहां तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैद।

तुस जपै निदाना जमकाल तिन को लगे नाही जो इक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र नीत पाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुझनो तन कहया तिन जम नेर न आया बेअंत गुण तेरे कथे न जाहि सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारे गौरी महला पंजवा श्लोक।

तुत असंख पुनीत कर पुने पुने बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहन हार। छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर मादो प्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तारे चरण कमल आरा दिए जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिए कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल गिरदाया पगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाये सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत।

बिनवंत नानक करो कृपा, समरथ सब कल धारे। गुण गाओ मना अचुत अविनाशी, सबके ऊंच दयाला, दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला, प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारे सब किसे, काल कंटक लोभ मोह नाशे, जी जाके प्रभु बसे, सो प्रसन्न देवा, सफल सेवा, पई पूरन काला, बिनवंत नान।

सखी वस आया फिर छोड़ न जाई, ते रीत पली भगवंत है, नानक जरा मरण पे नरक निवार है, पुनीत कर किस जनत है। सुन सखिए ए पली बेनंती, ए हो मतांत पकाई है, सहज सुभाए उपाद रहत होए, गीत गोविंद गाई है, कल कलेश मिटे क्रम नासे, मन चिंदिया फल पाई है, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई, प्रभु मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए, खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो सांत सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एको रव रया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कच व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहा पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर। पौड़ी

संत साध रज राचे तंदे कहां ब्यापे ताहू जो एक छाद अनकते न जाहू जा कहि है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनक पे

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो बिथम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने, तिन प्रभ आप, पस आपन हो।

या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दिवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करे सो फुन हो एक के सगला विस्तारा नानक आप सवार नहारा श्लोक

0: पौड़ी।
1: रे मन बिन हर जय रचो, कहते बंधन पाहे, जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रख।

अधमाते या माया में जन्म मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो।

आप अवर नहीं हो, होनहार होत सज आया, हो आपका अंत ना काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने, जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तें जपना। श्लोक आत्म रस जे

तो गमिये जास रसन हर हर जस पन्ने आए बसे साधु के संगे अंदिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिन से दूजा पाओ दुख दर्द तिसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो

एक नाम ले मने परो। यैया जन्म नहारिये गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया जाके ही रह एक। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत, गुरपुरे उपदेशया नानक जपिये नीत। पौड़ी। अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चलो सब कोए, ताको मार

पूरक कुंभक रेचक कर माता ज्ञान ध्यान तीरथ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी राम नाम संग मन नहीं एता जो कछ तीनों सौ अनेता ओ आते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे कर्म किरत की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को।

उद्यान परमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे पंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहीं सुमार। पौड़ी।

खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनब स्यों जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद ना दुख ना दानते।

लोग आस अनित गुरमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहा बिसासा देह का बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न बिरदी कछ बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहु मस्तक पाग, नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोखे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए, आप जुगा दी हुन होवत नानक एक कैसोए पौड़ी। कद्दा कालो मने ए बिन हर दूसर नाहे, नै होवा नै होवना जटकत ओही समाहे। पूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल महे पुनः चरना। काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

चीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया करगत पै नानक ने छपया श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग शांत प्रगट

सभागा चार कुंट देह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

छच्छाचार हो तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। छाड़ सियान बहु चतुराई, संतन की मन टेक टिकाई, छार की पुत्री परमगत पाई, नानक जाको संत।

पौड़ी। जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ, जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसदा जो फिरता।

बिनस्तो कास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे हो वो सो प्रसन्न। ज्ञा कह

या डेरा को श्रम कर काले जा का तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जा को दृष्ट पूरन भगवान डेरा ने चल सच।

जय सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम पो काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राए, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जोबन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक माया न साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनेक बंच बल

नानक नाम ते आईए कारज आवै रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटै संत संग होए बास तुरते।

सुनिया। गुरमुख जे कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जप जपिया, अंतर बाहर रंग गुरु।

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ छत

नानक गुर ते सिख पाई फिरन मिटे नितनीत पौड़ी। अफा फिरक फिरक तू आया दुर्लभ दे कल युग में पाया फिर या अवसर चरे न हाथा नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान ना होई एक जपो जप सोई करो कृपा प्रभु कर।

आवै बांध्यो आपन हों हों बंदा दोष देत आगे को अंधा बात चीत सब रही सियानप जिसे जनाबो सो जाने नानक श्लोक पै पंजन अग दुख नास मने अराध भरे संत संग जे रिद बस्यो नानक तेना प्रमे पौड़ी पब्बा परम मिटावो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम ए माए गुरमुख परम पै मोह मिटाया नानक ते परम सुख पाया श्लोक माया डोले बहु विधि मन लपट्यो ते संग मांगन ते जे

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

मम्मा जाहू मरम पछाना, देखत साध संग पतियाना, दुख सुख उआ के समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख बिसेखा, उआ रस में उआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे, नानक ते बंधन कटे, गुर की चरनी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया, याहू जतन कर होत छुटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरन तारे सबको, वाहे जपे बिन उबर न हो, याहू तरन तारन समराथा, राख लेहो निर्गुण नरनाथा, मन बच कर्म जे

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच कर्मा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुख।

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोए। श्लोक। गुरुदेव माता

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

सतगुरु प्रसाद। आद गुर ए नमः है, जुगाद गुर ए नमः है, सतगुर ए नमः है, श्री गुरुदेव ए नमः है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, पल पले स्तन माय मिटाओ। सिमरो जास विसंगर एक है, नाम

पहचानो। जय मां प्याम सब बहु काम, तय हर के नाम की तुम ऊपर छान। जहाँ त्रिखानन तुझ आकर खै, तय नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बरकर नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। हर दस पर संत दिन रात, हर हर औसत साठ कमाट। हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भूत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब करे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत पछवाए वियोग। जन वाता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप सब दीना। हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपे, हर का पगत प्रकट नहीं छपे। हर की पगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते करे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय से, संत प्रताप दीर्घ सब नसे। संत का संग वड भागी पाये, संत की सेवा नाम ध्याये। नाम तुल कछ अगर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व तंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान, खत शास्त्र स्मृत वख्यान। योग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग बन मदे फिरिया। अनेक प्रकार की ये बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिरजीव, महा उदास कपि सरथी वै। अगन माए हो मत प्राण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत्साधन। निमख निमख कर शरीर कटावे, तो भी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम संसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे। सोच करे दिन और रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन से कभू न बिख्या करे। जल को वह बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची वीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे। पेट अनेक अगर नहीं बुझे, कोट उपार दर गहने सिजे। छूटत ना ही ऊप बयाल, मोह व्यापे माया जाल। अगर करतूत सगली जमदाने, गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ए हो मैं चोरे। जे को जन्म मरण से डरे, सात जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तों कै बल बल जासा। सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, साफ संग जा का मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिये सबसे ऊंचा। जा का मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक आप पुन नहीं लेता।

कर जामे अपनी गत मिट जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया।

संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे करे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लो और निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कैय तो समझे पोरा। कहां विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु दुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास।

सारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगनत साओ अपनी देरास, खात पीत बरते अनत उलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मनी रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोए, बहुर उसका भी

करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत

गोविंद भजन दिन बिरथे सब काम जो किरपन के निरारथ दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ता कह बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर पेख न काहू पीन और उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख करे संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण पर आता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप कर्त निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहते सब कछ जाने आत्म की रहते।

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखै विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।

होत साध के संग मिटै अभिमान, साध के संग प्रगटै सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है।

साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सो बासुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछकाल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलूखत हरे, साध कै संग नरक पर हरे। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुन गाओ। साध कै संग ना मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध कै संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट बीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संग।

समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी

नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूर्व विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पय तीर्थवासी, कई कोट वन क्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए, कई कोट कौन पानी बैसंतर, कई कोट बेसपू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थ शास्त्र, कई

जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक के जन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई

तिन होवत आत्म परदास। कई कोट तक के देते सदा निहारे एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पहे सत सद ही जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे। अपने जन को साथ साथ समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे।

कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो

मानक दर्द गले अष्टपदी, जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने में जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

त्रिन समान कछ संग न जावे। बौलस कर मानक ऊपर करे आस, पल पीतर तांता होए विनाश। सबके आप जाने बलवंत, छिन में होए जाए पसमंत।

सारे अनित तपस्या करे अंकार, नरक सुरग सिर सिर अवतार। अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह को कैसे गवे।

सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हों छूटे सहस खटे लखो उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए करण

या समाए आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब के साथ आप तीनों आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उस पे तिन कहो किस होए स्थान सनंतर एक कैसोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब की ना कोट।

संत के दुखन आरजा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जून लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाव को नाहे, नाम संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महा अपताए, संत का निंदक खेंटे करना पाए, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे,

तैं पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़पा गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार।

निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद आपन आप सुजय, तिसकी जानू तृष्णा बुझय। साध संग हर हर जस कहत, सर्ग रोग ते ओ हर जन रहत। आमदन कीर्तन केवल ख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जन की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं बुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तक सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। न किस जन्मे न किस मरे, आपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रखाप उथाप। अविनाशी नाही किस खंड, तारण तार रहे हो ब्रह्मंड। अलख अभेद पुरुष प्रताप, आप जपाए तनानक जाप। जिन प्रभु जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदारन, प्रभु के सेवक दुख विसारन। आपे मेल ले कृपाल, गुरु का शब्द जप पे निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ पागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान। जो किछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहे सुबाए होवे सो होए, करने हार पछाने सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माहि समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने आए। आप उसको आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एक को जान। श्लोक।

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्भ है जा फट किस किसका दिया दर्भ है आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तैहो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखान नाल चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख कर देवन हार अवर त्याग तू किस चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ सेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल तन तन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगे सोए क्यों व्यापार बिरला व्यापार है नानक ता कह सब बलिहार है चरण साध के तो पियो अरब साध को अपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए।

साठ सेवावट पागी पाई है, साठ संहार की संगाई है, अनेक विदन पे साधु राख है, हर गुण गाय अमृत रसाख है, ओट गई संत आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवालनहार, पूखे को देवत आधार, सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए, सब किस किसका ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया, जा के मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जा के हृदय को होए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कैत, साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता श्लोक, रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी।

वे सच्चे अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत देखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माए समाना बस्त माए ले बस्त गडाई ताको पिन ना कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपादन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राखे ताकि गतमित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुँचे प्रभु के सेवक पूछते ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रगटाया नीकी कीरी महकल राख है पसंद करे लश्कर कोट लाख है जिसका साफ न काटत आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करत बहु पाक तिसके कर्तव्य से जात मारे न राख है और न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत यो मन तंत्र पिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृष्टाने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सब काम बोलो जस जे बै दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करें भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रहे समाये जो हो आहो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का जाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर से आनक सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा श्लोक

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरे, गुर वचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड पागी है। सतगुर सिख का हल्त पलक सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए ने कामी, किसको हो प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले। बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ ब्रह्म। सह श्यान लयाना जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेखत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर वचन करन आघाने, मन सुन तो खासम पतियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तुस लय मिलाए। जीवा एक पुस्तक अनेक, सतपुर पूरन विवेक। काहू बोल न पहुँच प्राणी, अगम अगोचर प्रग निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन मुक्त करे, चरण कमल हृदय सिमरे। सब बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। क्यों हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सोए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण पास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग ना लेप, मन में राखे हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख सहते नासे। तपत माए ठाट वरताई, अंग भया दुख नाठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चूका निरपौ होय बसे, सगल व्याद मन से खैन से। जिसका साथ तिन कृपा भारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके क्रम गवन, सुन नानक हर हर दस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर एक को सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, कहे प्रभा साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो धमसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपास सब मीत विसारो, चरण कमल में उधारो। करण कारण सो प्रभु समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत्। यह तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आसरा को मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठभावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करें फली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनेक उपारी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान। मंत्र बोधो हर कहनाए, दैवस्तावत आवे ठाए। ताको विघ्न ना लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी।
तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव त्यों रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनेक उपाव न छूटन हारे सिमरत सासत वेद विचारे हर की पवित करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लपतावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर्गनता इनसे कहो तुम कर्म सनाता राज रंग माया विस्तार इनसे कहो कर्म छुटकार अस हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम दिसाओ नानक पछताना गुर की मत तू ले आने पगत बिना भो डूबे स्याने हर की पगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल वाखो मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए आप जपो अगरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत सत हर को नाओ सह सुबह नानक गुन गाओ गुन गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं विकफैल हो है अचिंत बसे सुखनाल साफ ग्रह सर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत घना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गए जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको सिमर एको मनाह एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भय एक अराज पराशक गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया।

अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पादरन मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो साथ साथ प्रभ तुम्हें ध्यावो चरण कमल छो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्टि मां सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ता में पूरन पुरख नहीं डोलाने सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध के संग परे शरण आम सब त्याग अंतर पर गास हम दिन लिवलाग बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख क्रम गया इच्छ पुनी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी जिस पासा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अग्न में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुरे सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाओ भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुण पास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेक दर सुख होए मन विकसे साध चरण तोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमख हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर्व गुण निर्गुण

फिर जाप अष्टपदी जब अकार्य कचना दृष्टि पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन न जापत तब हर्ष शोक कोक्ष व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म

सारा बहु बेंत उठते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम तय पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की योग ज्ञान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासा संत प्रताप। दो पाप का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस को गन निर्जोग। जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों।

नानकिए को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार। जात स्पावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे लय समाये। सुनते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तप का देता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता। जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस तज अगर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा कह सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जी अनुभव पात, जो जो रचियो सोच से त्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए, पगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आए, हुक्म बूझ परम पद पाए। किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बस्या निरंकार। बंधन तोर पे निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पैर प्रत्ये को नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उद्धार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन से पहुँचाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभे खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक दौर न आवे जाए। तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ध्याए। निरपो जपे सकल को मिटे, प्रभ कृपा से प्राणी छुटे। जिस प्रभ राख है तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन देखत कुदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जा के अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पै अमरा पद पाया, साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाद अनहत्ते नाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। तरन माए आकाश दयाल, सर्व लोक पूरन प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट गह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास।
संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने शुभ वचन, सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार सब जाने, अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, हाथ सत किया सब सत, तिस तब ते सगली उत्पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार, अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रहे मिलाए, कौन निकट कौन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वर्तारा, सर्वनैन आप देखनहारा, सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जात एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप्त तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां ले समाए, इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा, आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकि दत नित कहीं न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिस ताकि या सब परवान।

जाने। जो जाने पिस्तला सुख होए आप मिलाए लय प्रसोए। ओ तनवंत फुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जाने आया जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ जन के संचित खावे नाओ। हाथ मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमा।

मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उदरे तिन के साथे।

अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकार से रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक निभी खेप हमारी।

होए पर भगवान पुरुष प्रगट सब लोए सबसे ऊंच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन काट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध।

दास सुंदर चतुर तत्व का बेटा सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बस

निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माए समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मलता के करम।

क्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम।

नानक संत निर्मल पए, जिन मन वसया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखे फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग प्रम तो कणो, सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाए, जिनकी ये तिसे न जाननी, चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस, कभो न टूटे ताप, पार ब्रह्म पूरन तनी, नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो, महानरक में वास, कर कृपा प्रभ राम।

पव बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

अनुसार जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्ता

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस कथे बोले सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक स्यों लिवलाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म पर

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निध, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल धर्म

प्रीत हर नाम न जपै करत विपरीत पर त्रै रमै बकै साध निंद करन न सुनही हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उदर कहताई अगन न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभु बिसरत मर जमै अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखूं तत सोए मन बस आ

मन में चित में पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक इहो संज

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचपू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाई है, नानक राम रमत फिर जोन न आई है। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख।

उतरे हर अमृत हर उद्धार, सब कार्य तिनके सिद्ध हैं जिन गुरुमुख कृपा तार, नानक जो तुर मिले।

आई कुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफ सवालियो स्वरूप है जिनकी तीस पार लगाई गुरमुखानो।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसावास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी तुद जेवड़ होए सो आखिए तुद जेहा तू है पड़ी है। तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वै

तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वरतदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया, जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा, आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास। सब आपे आप वरतदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याए तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे। तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे। मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा, सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए, ओए जेहा चितवें नित तेहा पाएन, ओए तेहो जेहे दैव जाए। नानक दोही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देख।

कनेरियां जे कार वत होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे अहंकार न विचों जाए अहंकारियां नो दुख भुख है हाथ तगे कर कर मंगाए कूड़ ठगी गुजी ना रहे मुलम्मा पाज ले जाए जिस होवे पूरब लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस पेटी है मिर संगत सुवरन होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावे तिवे चलाए पौड़ी जिन हर हृदय सेव्या तिन हर आप मिलाए गुण की साध तिन स्यों करी सब अवगुण शब्द जलाए अवगुण विकण पलरी जिस देह सो सच्चे पाए बलिहारी गुरे आपने जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुरु विच वड्डी वड्याई जो अंदिन हर हर नाम से आवे हर हर नाम रमत सुत संजम हर नामे ही तृप्तावे हर नाम तान हर नाम दीबाण हर नामो रख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुरु पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक कोर मुह काले खड़िया ज्यो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरणी पवे ता उबरे जा हर हर नाम से आवे हर बाता आख सुनाए नानक हर करते एवे पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म ना मन्ने ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल परोसी करे बहु तेरी उस दा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया जो गुरगो पे अपना सो पला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आप सुनाए पूरे गुर का बचन ऊपर आया गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है सो ले जिस सतगुर टिके सो सतगुर जे सच त्याईदा सच सच्चा सतगुर इके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वर्ष के जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके ओए बोले किसे न पावनी मोह काले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसानी लाया गुरमुख बस जमायन मन मुखी मूल गवाया सबको बीजे अपने पले नो हर पावे सो खेत जमाया गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फल अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करते मार कढाया किरसानी जमी पाओ कर हर बोहल बख्स जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम अराध्या आप तरिया सब जगत कराया महला चौथा सारा दिन लालच अटिया मन मुख होरे गल्ला राती ऊंगे दबिया नवे सोत सब टिल्ला मन मुखा दे फिर जोरा अमर है नित देवे पला जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे से अपवित अमेद खला काम व्यापे कसुद नर से जोरा पुछ चला सतगुर के आखे जो चले सो सत पुरख पल पला जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला सब तेरी बनत बनावनी नानक पल पला।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहु सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुर सिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दुखी चै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने आप भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मौका ले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, आन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवे सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला, उस दे आख्या कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म तरती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होई।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाहीं कोई जाए। मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके। नित पंबल पूसे खाई, जिन गुरु गोपिया अपना से लैन दे तहा फिराई। तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे ओस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाई। मैला चौथा जे होंदे गुरु बह टिकिया, तिस जन की वड्याई वड्डी होई। तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई। तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ तरिया। गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई। अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बह टिकिया। आपे पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी। काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले। नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले। से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया। नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओ टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया। ओन हलत पलत सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। ओ तेली संदा बलद कर, नित पलके उठ प्रभ जोया। हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू, किछ गुज्जा ना होया। जैसा बीजे सो लुणे, जेहा पुरब किने बोया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण तोया। गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा कार संगोया। जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय। अंतर जोत पर गासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत। सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत। इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस्तिन कह रिदे है, जिन हर वस्या मन माहे। हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे। जिन निरपो नाम से आया, तिनको पौ कोई नाहे। हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है, जिन हर उठा मन माहे। ओए आप तरे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख हम।

0: से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिखा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुरु अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निवाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आख सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। इहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया,

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी, साला ही सच सलाहना सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसे सच सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी अरादया से जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओ आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यों उबली मजी ठह रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू लै अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया।

सतगुरु नो मिले सही जन उबरे जिन हृदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुतो हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा हौ मैं जगत पुलाया दुर्मत बिखिया बिकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर पिजे जिन्नी एक मन एक अरादिया तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सावास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन पामदा से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा साकत जाए निवें गुर आ गए मन खोटे कूड़ कूड़ यारे जा गुर कहे उठो मेरे पाई बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै।

जे नित उठ समालेन। महला चौथा, सतगुर सेविए अपना पाये नाम अपार, पौजल डुबदिया कढ ले हर दात करे दातार। तन तन से सहा है जे नाम करे व्यापार, वन जारे सिख।

जन भगत है सच सच्चा जिनी अराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच ला दिया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या। सच सच्चा सब दू वड़ा है, सच सेवन से सच रला दिया। सच सच्चे नू

बिन गुरु मनुआ ना टिके फिर फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल हो है ता सतगुरु मिलिया आए जन नानक ना।

मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजिर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़,

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर नाल।

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नण करण समरथ प्रभ सदा संभाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिखा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिखा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपे सो आया परवान, तिस जन के बलिहारण जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरुष।

मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ सरना।

तिनके जीविए हर अमृत चखे, काम क्रोध लोभ मोह संग सादा पखे, कर कृपा प्रभ आपनी हर आप परखे, नानक चलत ना जापनी को सके न लखे। श्लोक महला पंजवा।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपंदो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तो साधिचे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा, नानक जा

मर गए मर भी न सके मूल, वेमुख होए राम ते जो तस्कर ऊपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देवै।

ना पाए फिर ना ही मरने, जिसनु आया प्रेम रस से ही जरने, बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने, तेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरने। श्लोक महला पंजवा। सतगुर पूरे सेवे दुखा का होए नास, नानक नाम आराध्य कार्य आवे रास। महला पंजवा। जिस सिमरत संकट छुटे अनद मंगल विश्राम, नानक जपिए सदा।

लोथियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव्यो जी अड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया।

नाम बिन तन तन होसी चार जाने कोई जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हो।

दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए पौड़ी। जिस सर्व सुखा फल लोड़िए सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम ते आवो, कोई सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक घणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पोरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकर दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

पंजवा जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलख खुशियां कणी त्याए मुख न मोड़े टाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े नानक मनता।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर

तू सतगुर हौ नौ तन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पाथ काहू स्यो नाही। पत अप

जी नगन फिरत जो पाए जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग क्या नांगे क्या बांधे चाम जब नहीं चीनस आत्म राम रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई मुक्ति पेड़ न गैया काई बिंद राख जो तरिय पाई खुश रे क्यों ना परमगत पाई कहो कबीर सुनो नर पाई राम नाम बिन किन गत पाई गौरी कबीर जी संध्या प्रात।

कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण।

राजा रंक दो मिल रोई है, जो पैरस ना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कौका की माया। जस जंती मह जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना।

तित लागे कंचुआ फल मोती, कवन सो कर जो निरपो कहिए, पौ पज जाए अभय होए रही है। रहाओ सत तीरथ नहीं मन पतिया।

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा। रहाओ अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंद

कहां सुख बिसरे परमानंदा। कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर। रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गै मरे। माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले कहो चूगे नित पेड। राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना। अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी। कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा। इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उर्वार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम। हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर। गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई। कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके। जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया, सांत पई जब गोविंद जानिया। रहाओ तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सह समाद। आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर

है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरन।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

जो मन मारे हैं, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी, ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरिया।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जान

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो, हर ठग जग

आई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै निता नित चीत, माया तपत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज, जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज बिगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता, रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रम नहीं होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परैर सूतक।

कोई कुशल कुशल करते जग बिन सह कुशल भी कैसे होई रहाओ माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है यो जग बेद्या पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागे गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मान

जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने विकारा हर पद दृढ़ कर रही।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल।

उनमत मान हिरियो मन माही, गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो रे। कह कबीर गुर मिलत महारस, प्रेम भगत निस्तारियो रे। गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश। काम सुआए गज बस परे, मन बौरा रे अंकस कहो शीस। बिखे बाच हर रात समझ मन बौरा रे, निरपय होए न हर पजे। मन बौरा रे गयो न राम जहाज, राव मरकट मुष्टि अनाज की। मन बौरा रे लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परया।

वह राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथी न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अम्ब थम्ब मन।

भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो। या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो, तिन ही माए अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर चौ दिस ठाट ठयो, कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ। इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी, कह कबीर।

जग में आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगर मैं रहता लख 84 जोन प्रम आयो अब के छुटके ठौर न ठायो कहो कबीर पज

रमैया गुण गाय जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो गया था, जीरे जाहेगा मैं जाना, अवगत समझ आना, जत जत देखो।

परम प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरप है, सती के सांचे पांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे।

जोन में प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे रहाओ।

उठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा ची

दिखे रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थानाना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथानाना। काट सकत

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहो जा को तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन बेदियो, पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा सस बिगास संपट नहीं आवा, अर जे तहां कुसुम रस पावा अकह कहां कह का समझावा, खखा एह खोड़ मन आवा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर में डर रहा समाई, जो डर डरे तम

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर न रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन की जय तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

अब तौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन मिल

पाप निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तह त्रिभुवन राओ खखा खोज पर जो कोई जो खोजे।

रहे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर कीर्तन में

ना ओ बढ़े ना कटता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे, अनद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो, काम क्रोध संग कबहो ना बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

दे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिये शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिये कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंच।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोड़।

हर त्या में हर त्या में तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी पगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे पगत सरान तुझी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से पगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवन अवरण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सो होई तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी तुझ आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कह न जाए तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरख।

इत रंग नाचो रख रख पाओ। पाओ फेरी होवै मन चीत, बैंदियां उठदियां नीता नीत, लेटन लेट जाने तन स्वाहा, इत रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर, आसा मैला पैला। पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया। किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रया, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागन होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तर, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगे जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, देख वरन दीसे सबके, जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा विदासे परमल रूप, उजल मोती चूगे हंस, सर्व कला जगदीश।

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर वार जिन पाया तन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ, नानक बस

एक तरन गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यों जल अम्ब ऊपर कमल निरारे। बुरा पला को किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है। अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस रे।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा करे।

ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ अनत तरंग भगत हर रंगा अंदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रहे निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया आद अपार अपरंपर हीरा लाल रता मेरा मन धीरा कथनी कहे कहे से मुए सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है सब जग देख्या माया छाया नानक गुरमत नाम त्या।

अंध जीव रस नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आगे, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे।

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशि ता तीर्थवासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी एक

सिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामन कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सधी से जैर।

है कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक तिनकी।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिप्पी वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश। इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निराफल का।

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक थे एक रसीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस।

कर कर पगवे पेख पए, तो कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े, छोड़ विलायत देश बे, पीर पे कांबर सालिक साधक, छोड़ी दुनिया खाए पए, साध सहज सुख रस कस्त जियले, काकड़।

सूत पोती कीनी तू साहेब हो सांगी तेरा त्रणवे नानक जात कैसी आसा खर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तीतर पंच गुप्त मन वासे फिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो पंच सखी हम एक पतारो पेट लगी है जीड़ा चालन हारो पंच सखी मिल रुदन करे हार साहो कजूता कणवत नानक ले।

सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मैला पहला चीता होवे करे कराया तिस क्या कही है भाई। जो किछ करना सो कर रहा कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे क्यों दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी शतरंज बाजी पक्के नहीं कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

माफ़िमा हंडावो जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुगै जुग जोगी परम तंत में जोगं अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस पोगं। रहाओ शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादं सिंगी शब्द सदा तुम सो है एनस्पूर नादं। पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं। सगली जोत हमारी सम्या नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या। शिव तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर कर जोगी खीवा अमृत धारे। आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सगना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिव मारे पै वग गए खसमे सा पुरसा।

हर दर्शन पावे वड भाग गुर के शब्द सच्चे बैराग। हर दर्शन वरते वरतारा गुर का दर्शन अगम अपारा गुर के दर्शन मुक्त गत होए साचा आप वसे मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर के दर्शन सदा सुख होए गुर के दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवे परवार साधार निगुरे को गत पाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाई गुर के शब्द सुख शांत शरीर गुरमुख सां तो लगे नकीर जम काल किस नीड़ ना आवे नानक गुरमुख सांस।

सबद समाए रहाओ गुणा का दांत होवे सो गुण जाने अमृत शब्द नाम बखाने साची बाणी सूचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए गुण अमोलक पाए ना जाहे मन निर्मल साचे सबद समाए सेवड का घी जिन नाम से आया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह है तिन बलिहार है जाओ दर साचे साचे गुण गाओ आपे देव सह सुभाए नानक कीमत कह न जाए ऐसा मेला तीजा सतगुरु विच वड्डी वड्याई चिरी विच ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन विद होए हर अपरंपर अगम

जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म

जाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगार है, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक होमे मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दो संकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस साथ।

कर्म कमाए सब दे उचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए ऐसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साथ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने।

कह कह कहना आख सुनाए, जेसो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज सुनाए। नावे जेवड होर तर नाही कोए, जिसनो बक्से साचा सोए। पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसमै लाती जा निर्त करे बहु वाजे बजाए, यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सो जी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए। मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार। गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे। गुर के वचन भगत खाए पाए, हर जीव आप वसे मने आए। हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर सियो चित लाए। भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

बस है मन मुख अंध गवार हर कह पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर कह पाने सलाही है पाने मने सुखोई हर कह पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार।

लाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा और न कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए।

जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया। वड़ा वड़ा हर पाग कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मुख कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, गडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस व्यासा रहाओ, नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा रहाओ, हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सुठा सिख देवे मेरे भाई, मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे। आसा मैला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई। नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता। नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम रखो गुरमुख मन चीता रहाओ। नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ले गुरमुख बिकता। नाम बिना पुष्टि मोह अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा। हर हर हर जस जपे वड पागे, नानक गुरमुख नाम लिव लागे।

के तिन हप कर कंस बजावे जोगी थोथर वाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वरते तिस आगे हम आदेश रहाओ गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जोवे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे कब लग मेरा मन राम सुमारे कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे

आए आते हर अपरम पर करता हर आते बोल बुलाए से संत तले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गायक वणज ले जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राधा सा हर अठवां के

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श चार मेल बुलाया राव। अंतर नाम निदान गुरु मुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए, अंतर वस्त अनेक मन मुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए। राग आसावरी

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हूँ एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके, तैसे हर जन क्यों रहे हर सेवा बिन। किन्हू प्रीत लाई दूजा पाओ, रिज तार किन्हू प्रीत लाई मोह अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमर।

हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोए हर बिन रह न जाई। राज करण जगदी सुर प्यारे, मोए सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

सिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बोत दिखाया, पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रैगुण मोहे मोहा आकाश।

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़नावा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रैसो राती तन सुहागन नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार।

चार जित ग्रह वसे सो ग्रह सो बावंता गुरुमुख पाई किन विरले जनता सो करणी कामन गुरु मिल हम पाई जज काज पर थाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंक बहु फिरे उदास कर सेवा सब पुरुष मनाया गुर आनी कर मैं तो सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतोखी देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन यो मन लपतानी। सावा पारी द्वारे आए, वखर काडो सौदा कराए रहाओ, साय कठाया साहे पास, अमोल रतन अमोला रास, विष्ट सुभाई पाया मीत, सौदा मिलिया ने चल चीत। पौ नहीं तस्कर पौ न पानी, सहज विहाजी सहज ले जानी, हट के खटे दुख नहीं पाया, सही सलामत कर ले आया। मिलिया लाहा पै आनंद, तन सहा पूरे बख्शिंद, यो सौदा गुरमुख किने विरले पाया, सहली खेप नानक ले आया। आखा महल

कर मस्तक पार राखियो कर अपना क्या जाने यो लोक अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोयो कंक मिलियो मेरो सब दुख जोयो आंगन मेरे शोभा चंद निस बासुर प्रिय संग आनंद बस्तर हमारा।

पावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए।

पातो फूल काल न खाए। करण कारण समर्थ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जप जीवे नानक पोत पोत मेरे संग सहाय। आसा मैला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावे। परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते सो नानक आख सुनावे भगत जना को सदा आनंद है हर कीर्तन गाए बिकसावे। आसा मेला पंजवा जो मैं कियो सगल सिगारा तो भी मेरा मन ना पतियारा

वस्त्र विकोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक और बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्राफे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

हस्त रख परे ते चाम, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वे पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये है।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोको कहां डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर काटान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर कह अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुरु सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान है अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल हृदय अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे संत सखी मिल मंगल गाया अरहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर पट्टी आया मिल सतगुरु तन पूरा पाया ऐसा हर तन संची है भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ करकत हो न जाई रहाओ कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर।

जात पावे तम हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिब अर्थ अपेव, नानक लाया लागा सेव। आसा मैला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा, कुदरत वरते रूप अर रंगा। करे न चुरे न मन रोवन हारा, अविनाशी अवगत अगोचर सदा सलामत।

कर में वक्त बाहर उठ जाता, सुनी न जाई सच अमृत का था, वार करते चूठी लग जाता रहा, वजो साहिब का सेब बिरानी, ऐसे गुने अच्छा दियो प्राणी, तिस्यो लूक जो सद ही संगी, काम ना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभु दीन दयाला, ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला, आसा मेला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहा उहा उन संकाम, बिन हर नाम अवर सब छोरा, तृप्त अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ, पगत पंडार

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरु दीनो दान आसा मेला पन्नवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध कूप में निक्षो मेरे पाई रे रहाओ महा अगा अगन का सागर गुर बोहित तारे रत्नागर दुतर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कस छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आस्था मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके गुरमत अपनी धारी

गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल कर्म के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तक संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण करे की रा

उठत सोवत जागत विसर नाही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्नवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाओ पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पय कृपाला होए आप सहाए गुण निधान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा।

ठंडी ताती मिट्टी खाए ओह न बाला बूढ़ा पाए राव नानक दास साध सरनाए गुर प्रसाद पाओ पार कराए आसा महला पन्नवा सदा सदा आत्म प्रगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल सांत सदा सुख पावे किल विख जाए सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर पेटे पूरन पार ब्रह्म दूजे करके चौथी।

मिल संग पयो मन निर्मल गुरपुर लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनवा सगले दिस मीत प्यारे सब मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम ते आए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पार आवारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पंजवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करें चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

आधार अनद करे सास सास समारे न को है अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नाही रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानत जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी ता को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी होई से सह फले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक।

को किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंतर मन मेला, दोए ठौर अपने खोए इहां काम क्रोध मोह व्याप्या, आगे मुसमुस रोए गोविंद भजन की मत है होरा। गर्मी मारी सात न मरी नाम ना सुने डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

कहां छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनिया दाला, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पंजवा। उदम करत हो गए मन निर्मल नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे, रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे संत पूर तन लावे, मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरुमुख जागे आसा मैला पंजवा।

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे राव बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा।

सोई अजान कहे मैं जाना जानन हार ना छाना रे कहो नानक गुर अम्यो पियाया रसक रसक बिगसाना रे आसा में।

हुए कृपाल मात कितने आई बारक ज्यों प्रतपारिया गुर सिख राखे गुर गोपाल काद लिए माँ पौजलते अपनी नदर निहाल रहाओ जाके सिमरन जमते छुटिए हलत पलत सुख पाइए सास गिरास जपो जप रसना नीत नीत गुण गाइए भगत प्रेम परम पद पाया साध संग दुख नाके छिजे न जाए किछ पौ न व्यापे हर तन निर्मल गाठे अंत काल प्रभ पै सहाय इत उतराखन हाय।

चित मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो राव। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभु तुमरे, सहजे बिखिया पई खियो। सुख निधान नाम प्रभु तुमरा, एहो अविनाशी मंत्र लियो, कर कृपा मुझ सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। तन सो मानस देही पाई, जित प्रभु अपने मेल लियो, तन सो कल युग साध संकीर्तन गाये।

आँख ओरते बाँ पकड़ गुड़ काट लिए, निरपो पे सगल पो मिटिया राखे राखन हारे, ऐसी दास तेरी प्रव मेरे कारज सगल सवारे, गुण निधान साहिब मन मेला।

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया।

छुट्योरी सुर नर देव असुर त्रै गनिया सगलो पवन लुट्योरी दावा अग्न बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहोरी ऐसो समरथ वरण न साको ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पई न कारी निर्मल बरन बन्योरी महामंत्र गुर हृदय बस्यो अचरज नाम सुन्योरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक।

दीस आवत है बहुत पिहाला, सगल चरण की इव मन राला, नानक जन गुरु पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आशा मेला पंजवा, पावत रलिया जो बन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओढ़लिया, सेज सुख लिया मन गर्बलिया, रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर पगत बिना ले तरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनेक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया। आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे, रहाओ सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी।

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अंकार, कर्म कर्त जी को जंजार, प्रभु कृपा से मनवस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाय, यो स्थान गुरु ते।

कहो नानक नित इवै त्याई गत होवै संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याये मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाये सो जम जम की वाट न पाये आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए।

तुम्हारे दर्शन मांगो दे प्यारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन ना तारे, राव जाके निकट न आवे कोई, सगल सृष्टि को आके चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद का को जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आशा मेला धन्यवाद। एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो।

किलबिक बिनासे दुख दर्द दूर पय पुनीत संतन की तूर रहाओ। प्रभु के संत उदाहरण जोग इस पेटे जिस पुर संजोग मन आनंद मंत्र गुरु दिया कृष्ण बुझी मन ने चलतिया नाम पदार्थ नौ निध सिद्ध नानक गुरते पाए।

ते पय मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाओ बिन सो मन का मूर्ख टीठा प्रभु का पावना लागा मीठा गुरपूरे के चरण गए कोट जन्म के पाप लहे रतन जन्म एवं सफल भया कहु नानक प्रभु करी मया।

रहा मूर्ख मुगद अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन

तुत कतै न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ता कै संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन कह अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता। सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ परोए। कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन वस्या हरनामा। आसा मैला पंजवा, काम क्रोध अहंकार विभूते। हर सिमरन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते। जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम बहु जोन को आया। अस्थिर भगत हर चरण से आया, बंधन अंग कूप गृह मेरा। मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहु नानक जो प्रभु शरण आये। इहा सुख आगे गत पाए, आसा मेला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन

तू मेरी गत पथ तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अनदिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन्म।

निसारे हो, खिसर गयो पूम पर डारे हो, साध मोहिला दी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आसा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, उचित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए, आसा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी राव, नाम दृढ़ाया साध कृपाल।

को जन पूरन रहे अघाई, कछु न थोड़ा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई, मानक की को केत चलाई, जाकी सेवा दस अस्त सिधाई, पलक दिशता की लागो पाई, जाको दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मेला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणक बिना सो संसार, नाम रते जन पै भगवंता, रहाओ जो मैं अपना साहिब चीत, पौ पौ मिट्यो मेरे मीत, जो मैं ओट गई प्रभ तेरी, का पूरन होई मनसा मेरी, देख चलत मन पै दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई, सोचत साचत रैन बिहानी, अनक रंग माया के चितवत, कबू न सिमरै सारंग पानी, रहाओ द्रुम की छाया नहीं चल ग्रे बांधिया, काल के फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सोथान मूड नहीं चल कर पाया, साध संग जप्यो हर राय, नानक जीवे हर गुण गाए। आसा मेला पंजवा, दो पुके नावा, उनके संग तू करती केल, उनके संग हम तुम संग मेल, उनके संग तुम सब को लोरे।

है जाहर, उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल, उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत, उनके संग तेरी सब विद फाटी, उस बिना तू हुई है माटी, ओ बैरागी मरे न जाए, हुक्मे बादाकार कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक खाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता ना

सो तृष्णा जा ओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे तरिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सरई सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दा

भाग ता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो वो देन उनके संग देखो प्रभ नैन निमुख निमुख एही आ

उपत होए के राज समाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया। संचत संचत फैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मजरिया।

पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है, बाट काट गृह

अब मोर है मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मैला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मिठा माने, एक नाम संकन आधार।

प्रतपाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरिए, नानक दर्श प्यास।

आवग आज्ञा पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा। रे मन लेखे चाले लेखे बैसे लेखे लेंदा साहा। सदा कीरत कर नानक हर की।

पुरख विधाते हैं, बहुर बहुर जन्मा दे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुर मिल सब सुख लादे कहो नानक।

जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बोर बोर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ

ਸਾਰੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ ਨੀਤਾ ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਆਨੀ ਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ।

प्रीतम प्रत्येखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल जुग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे खाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे एहो तेरा बिरद। कर जोड़ नानक दान मांगे अपने संतां दे हर दर्श। राग आसा में

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मिथन मनोरथ सुपन आनंद उल्लास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन ला।

चरणन सरहन संतन बंदन सुखो सुख पाहे, नानक तप्त हरि मिले प्रेम पिरी आशा महला पंजवा। गुरे दिखायो लोए ना रहाओ, इते उते कट कट कट कट, तू

आया गुण रसरत गावे, एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आशा महला पंजवा, हर बिसरत सो

प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही, वर्त नेम संजम कर थाके, नानक साध शरण प्रभ संग वसे। आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। विकार माया माद सोयो सूझ बूझ न आवे, पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे। लोग बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही, खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ। वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा, निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा। दान सगल गैर वजह परया, दीवान लेखे ना परया, जिह कारज रह ओला सोए कामना करया। ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया, मान तान।

लोग त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आशा मैला पंजवा हर शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ। खिनहु पै निरपै खिनहु खिनहु उठ धायो खिनहु रस सोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु जोग ताप बहु पूजा खिनहु करमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहा सो चित धर हां, अनस्यो कोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

ना रहाओ। टूटे अन परानहा रवयो सर्व थानहा लहो जम पयानहा पायो पेड़ थानहा तो चूकी सगल कान।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो बिदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जा गया हा, नानक बढ़ पा गया।

लोग दस्यो दसहु दिस्तावत आशा लाग्यो तन की रहाओ सुख कह हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार सोम ज्यो डोलत नै सुध राम भजन की मानस जन्म अकारच खोवत लाज न लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सैतन की।

उत्तर अवघट सर्वरनावे, बके न बोले हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत चोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, परपुर तार रहा सब ठौरे, रहाओ सच व्रत नेम न काल सुनतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाध लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच

सुरत विभूत चढ़ावे, दर्शन आप सहज कर आवे, निर्मल बाणी नाद बजावे, अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मुरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मत एक भाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार

उजड़ पर मैं राहे न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साच तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पै उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहे आ जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा।

जमण मरना हुकुम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अवरना पाल हालत पलत निभी तुदनाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। महगो मोल पार अपार, अटल अछल।

जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरना गुर बोहित शब्द पै तरना निरपो आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म कर्म बहु संख असंख बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप सृष्ट उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

शिव सहज कर गुर करतार, आशा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए।

सांच अकूट पंच तीन नव चार समावे तरण जगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिखका माता जग स्यो लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे।

हुक्मो वर्ते जो तिस पावे गुरबिन पूरा कोई न पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे से बढ़ पागे।

गुरुमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द।

है सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाने, गुरुमुख निर्मल नाम बखाने। हर जियो आ गए करी अरदास, साधु जन

बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह कर आपे, बिन गुरु शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो हो मैं कौरा। रहाओ एहु मन मुग्ध कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुरु मेले, काल कंटक मारे सच पेले। इहु मन कर्मा इहु मन तर्मा, इहु मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहु मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रिभुवन सोजी होई, इहु मन जोगी पोगी तप तापे, गुरमुख चीने हर प्रभ आपे, मन बैरागी हो मैं त्यागी, कट कट मन सा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखे, दर कर मैली हर

आस इकत छाए किए गुरुमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरुमुख इव मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन पय निरंकारी इव मन निर्मल दर कर सोई गुरुमुख भगत पाओ तुम होई एनस हर जस गुर प्रसाद कट कट सो प्रसाद जुगाद राम रसायन इव मन माता सर्व रसायन गुरुमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा मैला पहला तन बिन से तन का को कही है बिन गुरु राम नाम कत नहीं है राम नाम तन संग सखाई एनस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम न छोड़ो आपे बक्स मिलावन हारा रहाओ कनिक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिसको बक्से नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरु

अवर्ण औषध पंत न ममता, हर हर सिमरन किल विखानता, तू आप पुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा, अमर पुरख गुर दर्शना देखे, विम गुर शब्द जन्म के लेखे, देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद, पर पुर तार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही। जाके भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम, बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान, ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग। आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। राव बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार, बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कलक

से तन जाए बिन हर भगत न पवी थाए बंधन वेद बाद अंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम शरणाई सतगुरु राखे बंद ना पाए।

बनाई, कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, ऐथे दिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे पाई, राव, कहां सो करदर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान संगोली हरमा।

ओनी तुपक तान चलाई ओनी हस चिड़ाई जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी पटियाणी छकुरानी इकना पेरण।

सुहाए दुख सुख तेरे पाने होवे किसे जाए रुआये हुक्मी हुक्म चलाए विगसे नानक लिखिया पाये एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसा काफी मेला पहला कर अठवां अस्त।

होई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

जे चलदा ले चलिया किछ संपै नाले, तां तां संचो देख के बूझो बिचारे। वणज करो मकसूद ले हो मत पछो तावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किस कमावो।

पर पंडित पौंदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करें नित तीर्थवासा आप न चीने।

इस गिरही सेवक साधका गुरुमति लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे, गुरते दर कर जानिए।

जय गुरमुख नाम पियाईए मन मंदिर पी जय रहाओ कूड़ा लालच छोड़िए तो साच पछाणे गुर के शब्द समाये परमार्थ जाने यो मन राजा लोभिया लुभ तो लोभाई गुरमुख लोभ निवारिए हर्षो बने आई कल्लर खेती बीजिए क्यों लाहा पावे मन मुख सच ना पी जई कूड़ कूड़ गडावे लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी साचो साहिब मन वसे हो मैं बिखमारी दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई मन मुख पत्थर से

हुक्मी पैदा जाए दरगे पानी है, हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख कालिए, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है। आसा मेला पहला, क्या जंगल टूंडी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए, रहाओ आप मिलावे सच ता मन पावे।

नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले जम्मण मरना आखी है तिन करते किया आप दवाया मर रहे फिर मरना किया साई कार कमावनी तुर्की फुरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

पर खाए। गुर बिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए। मन मुख जे समझाए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए। जन्म मरे परमाए।

वड्याई गुर की सेवा सो करे जिस आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाग सतगुर मिले पाई है पद निर्वाणी मैं ओ लगिया ओ

साहिब सो मन मानिया दे साच आधार एन इस नाम संतोखिया सेवा सच्चाई ताको बिघन न ला गई चाले हुक्म रजाई। हुक्म रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे खबर न पाए नी रले जूठाने नित नित खरा संभालिए सच सौदा पाइए खोटे नजर न आवनी ले अगन जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जां कुद पाणिया जो लग जियो प्राण सच दियाई है लाहा हर गुण गाए मिले सुख।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पहचान सी, सत संतोख।

ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे। तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने। कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी। जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जानी। जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर मन मुख फिरे।

गुरु सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुरु सेवा लाए, अंगिन पगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सोई सतगुरु नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मन वसाए, इहो सिर दी जय आप गवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पर पर दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंधन पोगे हूँ मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूँ मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत।

गुर ते कर दर पाया भगती परे पंडारा। गुरमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरमुख परत सलाह है अंतर शब्द अपारा। गुरमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई। सत गुर मिले आप गया, त्रिभवन सोजी पाई। निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मिलाई। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होए। अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई। अंदिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू सुख पावे मेरे भाई। हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे। बिन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए। आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई। जी जंत सब तिस दे।

आप वाली द्वितीयन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओना नु बख्शियन अंतर पंडा।

जान सोई कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरे।

भंडारा। अंदर महल अनेक हैं, जियो करे वसेरा। मन चिंदिया फल पाए सी, फिर होए न फेरा। पार किया वक्त समाल लई, गुरसो जी होई। नाम पदार्थ अमूल सा, गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे, वक्त करे अंदर भाई। पर में पूला सब जग फिरे, मनमुख पत जवाई। कर दर छोड़े अपना, पर कर झूठा जा।

अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वड्याई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई। नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आता महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई। हर रस चाखिए मुक्त भय जिना साचो भाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहाओ। बिन शब्द आप न जापई सब अंधी भाई, गुरमती कर चानना नाम अंत सिखाई। नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई। बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम।

मिल प्रीतम सुख पाए, ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार, सासब राय सुंदरी फिर कहे प्यार, सुहागणी विच रंग रखियो न सच्चै अलख अपार, सतगुर सेवन आपना सच्चै पाए प्यार, सुहागणी सिगार बनाया गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावना अंतर।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे।

हुक्मे कार कराए दा दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया के तेरी सरकार, इक ना बख्शे मेल लह इक दरगे मार कडे कूड़ियार, इक तुर पवित पावन है तुद ना मिलाए, गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए, इक कुचल कुचील विखली पते नामो आप खुआए, ना ऊन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिरे उतवताए, नदर करे जिस अपनी किसनो पावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ना पहुँची है कथ कहने अंत न पाए, गुरते कीमत पाई है सच शब्द सुन।

सच रतिया सुहागणी जिना गुर कै शब्द सिगार। कर ही सो फिर पाया सच्चे शब्द विचार, अवगण गुणी बख्साया हर स्यों लिव लाई, हर वर पाया कामणी गुर मेल मिलाई। रहाओ इक फिर हदूर ना जानवी दूजे परम पुलाए, क्यों पायन दोहागणी दुखी रहन विहाए। जिनके मन सच वसिया सच्ची कार कमाए, अंदिन सेवे सहज स्यों सच्चे माही समाए। दोहागणी परम पुलाया कूड़ बोल बिखाए, फिर ना जानन अपना सुन।

किछ ना पाए, मैल नाही दोहागणी, अंत गए पछताए, सो फिर मेरा एक है, एक त्यों लिवलाए, नानक जे सुख लो।

सच निर्मल मन वसाए, सुहागणी सदा फिर पाया हूँ मैं आप दुआए, फिर सेती अंग दिन गह रही सच्ची सेज सुपाए, मेरी मेरी कर

मन सदा हरी आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरुमुख बीजे सच जम्मे सच नाम व पार जो इतला है लायन पगती।

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आखो आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

याद पाए अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार बिन नावे सुख न पाये ना दुख विचों जाए इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार अन दिन सदा जल्दी।

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चितवत अनेक प्रकार करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार। मन परदेसी आया मिलियो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो न मैं रंग। जेते माया रंग रस बिनस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नहीं चल हर को नाओ कर मित्राई साध त्यों नहीं चल पावे ठाओ। मीत साजन सुत बंद

हमारे दर्शन कौ बल जाओ, जिस सिमरत दुख बीस रहे प्यारे, सो क्यों तजना जाए। यो तन वेची संत पै प्यारे, प्रीतम दे मिलाए, सुख सिगार बिखिया के फीके।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दास

आरो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना, ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी, जिनका चित लागा से ही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा। टड्डे ताहे उसारे आपे, जो तिस पावे तिमे करे, कर कर वेखे हुक्म चलाए, तिस निस्तारे जा को नदर करे। नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर ना कोई दात।

निर्गुण राम तिन्नी बूझ लिया, तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथिया, नानक जिन को

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए एक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसै।

जप तप कर कर संयम थाकी, हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रत्न कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम, निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे, काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरम परो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाणे एहनिस नाम ते आये मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हों मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई संग न कम पैना।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग

विधाता दुख विसारण हार जियो दुख विसारण हार स्वामी कीता जाका होवे कोट कोटंतर पापा केरे एक कड़ी में खोवे हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सृजन हार जियो।

हर जियो ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेड़ ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो।

गुरमत हर त्याव नित हर गुण आख वखाने एनस नाम तिसे का लीजे हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

पाचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्धिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया।

पहला हम घरे साचा सोहेला साचे सब सुहाया राम तन फिर मेल भया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा

आवे भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे हर सोहे

गुरमुख हुक्म पछाणे, जिन हुक्म पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी आम दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा तह तह हर तेरे नाले, मन स्याणप छोड़िए गुर का शब्द समाले। साख तेरे सो सो सदा है एक दिन हर नाम समाले। जन्म जन्म के तेरे पाप कटे।

सतगुरु मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहा समाए क्यों कहे नानक सतगुरु मिले तावत थमया निज कर वस्याए मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोजी।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडा।

जपया दुख के लिख नाथ गवाया राम गुर परचय गुर परचय त्याया मैं हृदय राम रवाया राम रवे आराम हृदय परम गत पाई जा गुर शरण आई आए लोभ विकार नाव डुबदी निकली जा सतगुरु नाम दृढ़।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप न रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मनमुख मूर

अनेक कर्म करें अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। माँ बिखम जम पंख दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरु।

हर जपिए आसन राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, गुरुमुख हर पढ़िए गुरुमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख।

तुर लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, परम चूका आवन जान जियो।

किन हित दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे पग साधु, मन चूका सोग विजोग जियो, जिन हर मीठ लगा

पदार्थ हर हर कृतार्थ शोभा गुरमुख होई, अंतर बाहर हर प्रभ एको दूजा अवर न कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगे पावे मान जियो, सतयुग सब संतोख शरीरा, पग चारे कर्म त्यान जियो, तेता युग आया अंतर

कल युग हर किया पग त्रै किया पग चौथा चके टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखन हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया निच आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो, हर अंतर

रागा समेला पंजवा छंत कर पहला अणगो अणग जना मैं सो प्रभ दीठा राम चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया गृहवस आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया शीतल आघाने अमृत बाणे साजन संत बसी था कहो नानक हास्यो मन मान्या।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आते जाजी आपे मांजी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आते तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किच में सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गलत मिटाई चूकी ताई कदे न व्यापे मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज सोब बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा में गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सांत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता ऐसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया आपे कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी रात कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाई है मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्या हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आम न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते राम।

आप लिए लड़ लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संग्राती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन और थो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन और थो पूरा। आशा महला पंजवा संत कर छेवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जाको पै कृपाल प्रभु हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दुख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये। कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुरसो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चितवे आस पणी कर दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरण पतार उर्जी तिह सिवे यो मन लाल दी जय मन लाल दी जय पोक करी जय। हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आशा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जब हर पाया मन माहे। छंत जाको खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन कौ निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व से आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी
जाको सेवे लक्ष्मी अनक पाप गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खट शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवे तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी आसा महला तन्यवा श्लोक उद्यम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए दुख दर्द ना को व्यापे नाम सिमरत सब सुखी साथ साथ आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पै चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पावन पतित पुनीत नाम

है सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारे।

आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास देह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वचल हर वेद आप बनाया आशा मैला पन्नवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर देह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाके प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कैमद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निध तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का कह अंग घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछों चरण पखार आप त्यागी है तज आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन ला गया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जपंतिया कछ न कहे जम काल नानक मन तन सुखी हुए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहे होते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राख नहारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तय पौन नाम तारीख उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे वसुध कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया वही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही निपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा कट कट वासी आप विरले किने लया
जय कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जान्या ब्रह्म पसर्या ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम निकराव रया जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपुनी कुल संगुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आशा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत छंत पिन्नी रैनड़ी है चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ सरना ही किनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नाम सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच्छ पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिन हंत नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकी आप पूछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुड़ गुप्त अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पानी बिन हंस नानक रंग राती प्रेम सहज समाने सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा कारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिन से आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिन हंस नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तैं क्या चिर लाया मोलत कुनड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या तन पसम तेरी जमे हेरी काल बपड़े जितया

दूते देन पया गोविंद प्रगटाया, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन साध संग वखाणिया, अचरज दीठा अम्यो बूठा गुर प्रसादी जानिया, मन शांत आई वजी वधाई मैं अंत जाई पाया, बिनवंत नाम सुख सहज मेला प्रभु आप बनाया, नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय तरम करे दूत पह पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब सजे, गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिनवंत नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण, निज सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी बहुर जमना उपारा।

की साथ है, संग देखे करणहारा काए पाप कमाई है, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए, आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते, बलवंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काए मनो विसारी है, मिल साध संगे पदन संगे कुल समूह तारी है, शिव साधक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा, खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊ गड़े जन्मे संसारा, संसार सागर किन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया, जल फल मैयल रविया स्वामी पूछ अगम अकारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल आधारा, पेट हर कंदौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही, हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए, मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही, बिनवंत नानक वद पाग पाई है सुख सहज समाही, आशा मेला पंजवा शंख पर अठवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद, कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत, हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर, हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास, दिन खास जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करना पते, जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते, कुल रूप तूप ज्ञान ही नी तुझ बिना मोहे कौन मात, कर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात, मीना जलहीन मीना जलहीन हे ओहो बिछरत मन तन खीन, हे कत जीवन प्रिय बिन होत, सन्मुख सहबान सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण, हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी, खिन रहन त्रिग तन तिस बिना पलका ना लागे, प्रिय प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना, श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत, कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत, अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात, हे प्रीत कमल बंधावत आप चात्रिक चित प्यास चात्रिक चित प्यास, हे तन बूंद बचित्र मन आस, हे अल पीवत बिन सत ताप, ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन सन अतकना, सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना, गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप, नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे खत नह संग।

सुंदरतम प्राण सुंदरतम ध्यान हे मन लुब्ध गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आशा महला पहला वासलोकाना श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा

तेरा हौच गया, हौच सत्यार कूड़ियार, हौच पाप पुन विचार, हौच नरक सुरग अवतार, हौच हसे हौच रोवे, हौच परिय हौच होवे, हौच जाति जिनसी खोवे, हौच मूर्ख हौच सियाणा, मोख मुक्त की सार न जाना, हौच माया हौच छाया, हौ में कर कर जंतु पाया, हौ में बूझे तांगर सूझे, ज्ञान विहूणा कर कतलूझे, नानक हुक्मी लिखिए लेत, जिहा वेखे तिहा वेख मैला दूजा, हौ में एहा जात है, हौ में कर्म कमा है, हौ में एही बन

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बर्फ बर्फ, परी है जेते मास, परी है जेती आर जा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साथ गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस्तर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख समझे पत गवाई, गिन नावे किस खाई न पाई, रह बिमानी मरी मसानी, अंग न जाने फिर पछतानी। सतगुरु पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उन्दे से ते ने केवल, हो मैं सब जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताव दे, एक मूल ना बुझन अपना अनहोंदा आप गणाए दे, हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैते आए दे। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ मारी कूड़ बैसन हार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार, कूड़ काया कूड़ कप्पड़ कूड़।

जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है पूरा लाल छड़ी है होए इकमन अलग से आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखे आता तोड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी से

सूरत होए, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए, पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए, नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोय महला पहला, लब पाप दो राजा महता कूड़ हो आशिकदार, काम लेव सब पुछिए बह बह करे विचार, अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार परमी तर्म करे गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड महे कर बार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवत जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पप पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता किन्नी खपन से आया ए ना जन पाके वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल लह इकापो तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।
1: श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर नया तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा। जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है खत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भेयो नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा

कर कृपा पार उतारिया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओज आवे आस पर जाय निराशे कित फल फिक्के फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सबको निवे आपको पर कौ निवे न कोए ताता राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गाहे शीश निवाए क्या थी है जान हृदय कुसुदे जाए। महला पहला। पर पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग मुख टूट बेफूखन सारंग त्रैपाल से हाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग कर्मंग सब फोकट निश्चो कर्मंग कहो नानक ने चो त्यावे फिर सतगुरु वात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावंदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना। श्लोक महला पहला। दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया। महला पहला। लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाह कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर। महला पहला। नाई मने है पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत। महिला पहला। तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वै निदारी तग ना तैरी तग ना थी तग ना जेवा तग ना खी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका इहो विडान मन अंधा ना सुजान। पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे।

कर लावो गोबर तर न जाई। तोती टिक्का तै जपमाली तान मलेच्छा खाई। अंकर पूजा अपने कतेबा संजम तुरका भाई। छोड़ी ले पाखंडा नाम ले है जहे तरंगा महला पहला। मानस खाने करे निवाज चुरी वगाने तिन गलताज।

दूर नान कूड़ रहा भरपूर मथे टिक्का तेड़ पोती कखाई हाथ छुरी जगत कसाई।

ना। मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर क्रिया पर अनुरूप, कन्नी सूतक कन पै लाल तवारी खाए, नारखन सा आदमी बदे जम पुर जाए, मैला पैला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है।

अंतर देव कानून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाप पवित्र पापी सो संग दया चुका पिया चित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक ए वह जानिए तित मुख थुका पाए महला पहला पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो पंडो हो वह दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वह बंगान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा एक को सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पावरती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आख है अपना जिस ना ही सोचुन कदी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संदी है जा रहना नाही है जग ता का एक गार वहंदी है मंदा किसे न आखी है।

का फिके पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों चूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही सहतारी है देखे की ता अपना तर्क पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी।

सूझिया, गुरु प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बाबा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

पर्वत खाया। कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया। आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक ओज से द्वारा। नवे खंड की पृथ्वी मांगे।

लाए, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाए, काजी तें कमन कतेब बखाने, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जाने रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदोगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहो, काकी मात पिता को कवन पुरख की जोई, कट कूटे को।

लब छुटकाए त्रियारो वह हंस के ला जाए। कह कबीर सुनो रे संतो, कैसा गर कह पाई इस बंदे से जुल्म।

एक तो के संत सुन अंग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोव ना बिलोव मेरे भाई, सहज बिलोव जैसे तकना जाए रहा। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सबक सिंजोई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

हार होगन हारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक अपना

पायर शोक पुजंग बलयो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत तह ले गयो मेरी रासत मुग्ध फिरे चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावे लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर कन पायो अंते चलदिया नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अन तन कछुए।

आई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। सू में तन रासन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पगत सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे, कलमा पिस्त न होई, सत्तर का बाकत ही पीतर जेकर जाने कोई। निवाज सोई जो न्याओ विचारे, कलमा अकल है जाने, पाचो मुस्लिम।

आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दो जग सो मन माना आशा गगन नगर एक बूंद।

साखी शब्द सुरत नहीं उपज, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पे संग तेरे, इंद्री का बल खाका। चरण रहे कर तर्क परे है, मुखो न निक्षय बाका। थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने प्रमते। खाका मन कुंचर उर खाका, तेज सूत तर रमते। मृतक पाए दस बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोरे। आसा इक तुके चौथा, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सर्पनी।

बल अबल क्या इसते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत कह हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ, कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण का खबर न पाई, क्या मांगो किछ फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया नवाती, चंद सूरज जाके तपतर सोई, वैसंतर जाके कपड़े तोई, गुरमत रामे नाम बसाई, अस्थिर रह न कतमू जाई, कह कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त न होई। आशा पहला

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक जुल्हा बुजो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कूपत राजे हर्षो मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा माया।

आशा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब हुन रूप न होई ताजा तन साज सब थाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरी।

आ गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा करे मनावे।

तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने ना ही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतरे।

गचनी में पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। तें कबीर ही रास देखियो, जग में रह समाए। गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब, गुरगम दिया दिखाई। ऐसा पहली करूप कुछ आप कुलखनी, सहरह कही है बुरी, अब की स्वरूप।

भाव कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंडरावा।

रहो रहोरी बहुरिया कुंगत जिन काडे अंकी बार लहेगी ना आडे रहाओ कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई कुंगत तेरो तो पर साचे हर गुण गाय कूद है अर नाचे कह कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म गतीत आशा करवत पला ना करवट।

मरम न जाना, सब जग आंतम आयो ताना, रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो ताना, तरन आकाश की कर है बनाई, चंद सूरज दो साफ चलाई, पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना, कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी, आसा, अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्बे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक।

आस्था मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी मत मत काटो जमकी फांसी कहां करो जाती कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती रहाओ रांगन रांगो सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो भगत करो हर के गुण गावो आठ पैर अपना खसम के आवो सोईने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर सोला।

आ जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ, सिंगच भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा।

त्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकि के तक आस, मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल सास अदग लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत।

संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम मां जय दी जय देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्गे संत चो ओलग ओलगणी और इत मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे संग तुम्हारे बासा नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा मादो सत्संगत सन तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेत सपैयल हम बपुरे जस की

तुझे चरण अरविंद पान मन, पान कर पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन। पान है मगन हो।

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहुत जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन सुरे प्रभ हीरे रहाओ। दिख फल मीत लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनुपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये। जोत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत समान।

आदि माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुत कारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

राग गुजरी महला पहला, चौक दे कर पहला। तेरा नाम करी चरनाठिया, जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जेर ले कट अंतर पूजा होए।

कार रहाओ। राव सस दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल, मन मुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा, दोह लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे, सतगुरु चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करो निस्तारा।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेविए गोविंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही जीवन पदवी पाए। रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया। तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी, दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई, जे लोचे सब कोय पूरे की पाल विच्चों निकले का सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाना चित करे। सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहाँ सेव बनी जियो। राव हर मेरा सुमृत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साथ अंत होए सखाई। हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा तन मेरे साथ चाले, जहाँ हो जाऊं तह जाई। सो टूठा जो टूठे लागे, सूठे कर्म कमाए।

सतगुरु मिले हर मन वसे, सहजी रहे समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए। शिव मुक्त जे मन जिने फिर तात न लागे आए, दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए।

मत में चल जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरुमुख बूझे हर चरणी चितलाए, हर चेत अचेत मना जो इच्छा सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पावे, पीवत रहे सदा सुख होई। रहाओ।

ही अंत गया पछताए। त्यों मन काशी सब तीर्थ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीर्थ तिस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुकम बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडते सुन शिक्षा से। दूजे पाए जेता पहे पड़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर सबद सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न हो।

गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, तिग जीवे तिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सतसंगत शब्द मन मोह। जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह। गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। गुरमत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जितना तय कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने सर्द

गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत पगत पंडारे जिन दर्शन सतगुरु सतगुरु।

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हो अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई राव। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दरगे हर हर देव दे आई, तन तन सबा सह।

करया। शैल पत्थर में जंतु पाए ता कारिज आगे कर करया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से करया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे पास सहरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करया।

सारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शास्त्र वेद सिमरत सब सो दे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर सुनाना, प्रम आए थर सारी। अनक सोच करे दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेख बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसर

कहा हर तन स्नान हर तन ज्ञान हर संग लाए त्याना हर तन तुल्हा हर तन देड़ी हर हर तार पराना।

निज पाई हाथ चरे हर सोका खावो खर्चो कोट न आवे हलत पलत कह संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे।

रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता। पावर तुम्हारा यो मन हो हर चरणा हो कौला नानक दास।

कहाओ। देश कमावन तंजोरन की मनसा भी चैनिक से सास, लश्कर नेब खवास सब त्यागे, जमपुर ऊठ सिदास होए।

ते हाटे हर जग साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो राव जो कुछ कियो सोई पल माने ऐसी भगत कमानी मित्र सत्रे सब एक समाने जोग जुगत निशाने।

आए, हर जप माया बंधन टूटे। ऐ कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ आठ पैर।

सगल करत नमस्कारो, वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

नानक को प्रभ पूर रहो है, एचो जतर कथा गुजरी महला पंजवा। मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो, जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो, करे प्रतपाल बारक की न्याय, जन को लाड लड़ायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो, शरण पर्यो नानक ठाकुर की, अबे दान सुख पायो।

कहो नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मेला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत, तिन का बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जी आ सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक।

तुम्हारे चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुम्हारी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास।

गुजरी महला पन्नवा जल की तेज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

कपते अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभ केते दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपा।

मिथ्या। पाज सदा भगवंत रहाओ, नाम एक आधार भगता, ईत आगे तेक, कर कृपा गोविंद दिया, गुरु ज्ञान बुद्ध विवेक, करण कारण समरत श्री कर, शरण ताकी गही, मुक्त जुगत रवा।

रहा सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभु के नाम अगम दयाल प्रभु।

दे सास सास अराध हर हर लह जाए मन की चिंग। मेरे मन जाप प्रभु का नाम सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ। साध संग उधार एहु मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिन सह मिटे सगल उपाद। अटल अछेद अपेद स्वामी शरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक सों लिवलाओ। पार ब्रह्म प्रभ दयाकारी बख्श ली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी मैला पंजवा गुरु प्रसादी प्रभ ते आया गई शंका टूट दुख अनेरा पै बिना से पाप गए निखूट। हर हर नाम की मन प्रीत मिल साद बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत राव। जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पै पूरन काम। सास सास ना बिसर कभू।

बहु सजन माया महा दीर्घ रोग, हर नाम औखद गुर नाम दीनो, करण कारण जोग, मन तन बांची है जन तूर, कोट जन्म के लह पातित, गोविंद लोचा पूर रहाओ। आद अंते मद आशा कुकरी विकराल, गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण, काती है जमजाल। काम क्रोध लोभ मोह मूठे, सदा आवागमन, प्रभु

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिष्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले शेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तास्र साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी महला पहला कवन कवन जाचे प्रवदाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जब तप संयम सच आधार हर हर नाम दिए सुख पाये तेरी भगत परे पंडार रहाओ सुन समाज रहे लिव लागे एका एकी शब्द विचार जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रभदाता दात करे अपने विचार कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दिन दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार सिद्ध

आई गुर प्रसादी हर प्रभु जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताए बिन हर भगत।

सोग विजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मले ना जम कान ना जम की बाकी रहा हर गुण रसन रवे प्रभ संगे।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तो सरणी लब लोभ।

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचारे ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तरतारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

तोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अवर

प्रब आज्ञा हुक्मन सिर हुक्मा। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुजरी मेला पंजवा कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। नाथ नर हर दीन बंदव पतित पावन देव, पै त्रास नास कृपाल गुण निधि।

हरण मद मोह दहन मुरार मन मकरंद जन्म मरण निवार तरणी तर पत राख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिदमंत छेद अहं बुद्ध करुणा में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाद दीन दयाल प्रसन्न पूरन जाचिय रजसाद मोह मिथन दुरंत आसा बासना बिकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड पंडार हर निद होत जिनाना चीर खल मुगद मूड कटाक्ष श्री तर पै गुण मत तीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंस रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक।

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विध नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर ना कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रैलोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई।

ना जाए, सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए, नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना अवरी को चितलाए, नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा, सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच, कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी, संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया, ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबद सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया, माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा, सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है।

होए सो जाए। हो मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सबदे हो मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग एवेहा जीविया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाई है हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत।

जिना नाम तन खटिया ए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुरु प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए ना रलन, ओना अंदर कूड़ सुहाओ। नानक करते बनत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी।

हर सुखदाता मन वसै, हौ मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता, तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अंदिन हर लिवलाए।

भगत सच्चे दर्शों दे सच्चे शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी हर प्रेम कसाए, हर रंग रहे सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए, सफल जन्म जिन्नी गुरमुख जाता, हर जियो हृदय वसाए, बाज गुरु फिरे बिल लांदी, दूजे पाए खुआए। श्लोक महला तीजा, कल युग में नाम निधान पगती खटिया, हर उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदिन नाम ते आया, विच्चे ग्रहे गुर बचन उदासी, हो मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुर अपने विटो, जिन परम पुला मार्ग पाया। महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले ज्यो देख, दीपक पतंग पचाया, पंडित पुल पुल माया वेखे दिखा, किने क्यों आन चढ़ाया, दूजे पाए पढ़े नित बिखिया, नामो दै खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अंकार बहु गर्भ बधाया, छादन भोजन ना ले ही सत पिखिया, मन हठ जन्म गवाया, एतड़िया विच्चों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया। पौड़ी, माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अंकारा, ए जम की सिरकार है, एना ऊपर जम का

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिलियाई वड पागिया वाह वाह मोह कढाई वाह वाह करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजन आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। बजर कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम फूले नदर नामनी मन मुख अंध अज्ञानी उपाय कितै न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रैन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद हो वै मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह कर्मी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सतरे।

नाउ जात ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता। श्लोक महला तीजा। वाह वाह तिसनो आखिए जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिए जे गुणदाता मत तीर

जे सतगुर दिया दिखाए महला तीजा। वाह वाह गुरमुख सदा करें मनमुख मरे बिख खाए। ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए। गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए। नानक वाह वाह करें से जन निर्मले। त्रिभुवन सोजी पाए पौड़ी। हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जय। हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जय। हर के पाणे सुख पाये हर लाहा नित ली जय। हर के तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जय।

वाहु वाहु करत्या मन निर्मल होवे, हौ मैं विच्चों जाए। वाहु वाहु गुरसिख जो नित करे, सो मन चिंदिया फल पाए। वाहु वाहु करें से जन सोहने, हर तिनके संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहारे जाओ। वाहो वाहो गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाहो वाहो जल फल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाहो वाहो गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाहो वाहो पावे। नानक वाहो वाहो जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणी है सच है इसवाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर रस चाखिया से पुन पराणी। बिन गुर किने न पायो पच मोए अजानी। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना।

पाए खुआए, जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए। जिना सतगुरु स्यो चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हो वही, ना ओए दुख सहाए, नानक गुरमुख उबरे।

तार टाडी दर कर पाए सी सच रखे उर तार टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार श्लोक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना जिस सतगुरु मिले तिस पौ पवे सा कुलवंती नार सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार कैथे सुख वडियाया दरगे।

पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया ज्यो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लहिया निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आ प्रवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी किस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाम सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पै अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हों तुद त्याई जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाई चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे बन

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुरु नाओ। सतगुर से तीरतया दरगे पाये ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वथ दे, जग में उत्तम कादिये विरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साप जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माय बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी। अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इकत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लखी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएं वज, नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याइन बेद कते बां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्याइन इंद्र इंद्रासना, शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए, ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए।

पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगै ना मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सतगुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई।

जब त्या पहुँच न सके कोई तेरी टेक जन। गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन। गुर पै सिफ्त पंडार कर्मी पाई है। सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताई है। रखे आप दयाल कर दासा अपने। हर हर हर हर नाम जीवा सुन सुने।

तेंदे सिमरन हब किच लगदम बिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हों टूंडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया इक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख ना थी वही। पौड़ी वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप।

नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप, कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप, आपे लयन छाए बंधन सगल काप, तिसन बुझी आस कुन्नी मन संतोख त्राप, वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जा को पै कृपाल प्रभ हर हर सही जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागियो जल थल मही अल सोए, नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोई पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए, पगता तेरी टेक रते सच नाए, जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ऊ ना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ, नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत, कड़ी मोहत न विसरै नानक रविय नित पौड़ी। सूर वीर वरियाम किने न होड़ी है, फौज पानी हाठ पंचा जोड़ी है, दस नारी औ दूत देन चमोड़ी है, जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़ी है, त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़ी है, परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है, गुरपुरा आराध बिखम दल फोड़ी है, हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजे नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी हो वै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे हो वै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ, पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया, महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू, कमाउंदिया सुख पुंच, त्याइंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए, आए चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार, सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो पगता मन बुठा सच समाहरा, तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदियां खांदियां मोह कटा, पैनंदियां सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जै जै रखे आप तह जाए खड़ोवना, नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, जो तेरे रंग रते से जोन ना जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड़ नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी।
आप जुगादी आप रखन वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊना कही न होए कटे कट सारिया मेहरवान समरथ आपे ही कालिया जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किश आपे आप बेअंत अपारिया गुरपुरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया सतगुरु दिता हर नाम अमृत चखिया सादा संग अपार अन दिन हर गुण रवे पाए मनोरथ सब जोनी नह पवे सब किछ करते हथ कारण जो करे नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित जिसे पुलाए आप मर मर जमे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते प्रभ दास का दुख ना खब सके हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अंदिन बिलपते जो सुन्ये कर काव पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निधान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब सेवक इक इक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया।

चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों।

जा मुस मुसरो है कबीर की माई ए बारक कैसे जीवे रघुराई तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम स्नेही ही

सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कवन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई।

मले ना लाछे पार मलो, परमलियो बैठो री आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई, कौन कहे किन बूजिये, रमैया आकुल री बाई, रहाओ, जो आकाशे पंखियलो, खोज निरखियो ना जाई, जो जल माजे माछलो, मार्ग पेखनो ना जाई, जो आकाशे कड़ुअलो, मृग तृष्णा परया नामे चे

त्रिलोचन जियो के पदे कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अंतर मल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी। परमे पूली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ कर कर खाया पिंड बंडाया चिंता मुंडा माया ओम मसान की पसम लगाई गुर बिन तप न पाया काय जपोरे काय तपोरे काय बिलो वो पानी लख चौरासी जिन उपाय सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

सतगुरु प्रसाद। परमाद पुरुष मनोपिमं सत आद पावरतं परमद्भुतं परकृत परं जग चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं वद अमृत तत्मयं नादनोत जसमरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्त सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्मिदं लोभाद दृष्ट परगृहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर पगत निज

मन हम विषम कई मुख लागे, सगली रहन सोई अंधियारी, गुर किंचित कृपा जागे। जन मानक के प्रभु सुंदर स्वामी, मोय तुम सर अवर न लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गले, हर को संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रिय के वचन सुखा में ही रे, ये चाल बनी है पली। लपरी मदरी ठाकुर पाई, ओ सुंदर हर खुल मिली। एको प्रियो सखियां सब प्रे की, जो पावे पुरसा पली। नानक गरीब क्या करे बिचारा, हर पावे कितरा है चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू ले राती। हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ, हों फिरो दीवानी आवल बावल। किस कारण हर टोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोली है, गुर प्रसाद जन।

हर गुण गावे हौ तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिले जुठारी, हमरे जिए होर मुख होर हो तो है, हम कर्म ही पूर्यारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यो पावे क्यों राखो स्वामी, जन नाम शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ती, ज्यो बेसुआ के कर पूत जमत है, किस नाम परयो है प्रकटी रहाओ, जिनका हृदय नाहे हर स्वामी, तिल बिगड़ रूप बिन रखती, ज्यो निगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिना साध जना पग चकती, नानक पतित पवित्र मिल संगत, गुर सतगुर पाछे छुपती, छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाइए, प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे, सदा सदा हर त्याय रहाओ, अंतर एको बार एको सब में एक समाये, काट अब झट गविया सब खाई, हर पूरन ब्रह्म दिखाई है, पुस्तक करे सेवक मुन के ते, तेरा अंत ना कतहु पाइये, सुख दाते दुख पंजन स्वामी, जन नाम सद बल जाइये, देव गंधारी माई होन हार सो होइये, राज रहो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोइये रहो, कह फूले आनंद बिखे सोग, कब हसनो कब रोइये, कब मुँह मैल परे अभिमानी, कब साधु संग तोइये, कोई न मेटे प्रभ का किया, दूसर नाही अलोइये, कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिन पर साध सुख सोइये, देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत, मेर ते तजो अभिमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कहे सोई पल मानो, नाहे ना का बोल करत, निमुख न बिसरो हिये मोरे ते, बिसरत जाई हौ मरत, सुखदाई पूरन प्रभ करता।

तेरे पूरे मनोरथ साध संग तज लभूं देव गुणारी मन जो अपने प्रभावो नीचो नीच नीच अपनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अदंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने तामे शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंगारी प्रभ जी तो प्रसाद प्रम डार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पायो चिंता

देह नारी मन सगल स्यानत रही, कर्म करावनहार स्वामी नाम कोट गही रहाओ, आप नेक पय शरणाई एह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही, खिन मैं खाप उठापन हारे कुदरत की मना पही। देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते। महा किलबित कोट दोत रोगा प्रभु दृष्ट तुम्हारी हाते, सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते। देव गंधारी पंजवा सो प्रभु जत पत पेक्षो नैनी, सुखदाई जीवन को दाता अमृत जाकी बैणी रहाओ, अज्ञान अंधेरा संति काटिया जीव दान गुर देनी, कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी। तरम तरम किस उपज ना आयो, नह उपजी निर्मल करनी, छाड़ सियानत संजम नानक लागो गुर की चरणी। देव गंधारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाओ, खोजत खोजत खोज विचारो हर संत जना पह आहा, तिना प्राप्त एवं निधाना जिनके कर्म लिखा, से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा, सुंदर सुगर स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा। देव नारी महला पंजवा मन कह अंकार अफारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभु राखो राखन हारा करें कराम हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभु नेरे हूते नेरे सिमर से आए गाय गुण।

पंख लाए उर्धारो देव गंधारी महला पन्या। प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर त्यान तार दिन रहनी जी प्राण से प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत विचारा दीना नाश प्राण पत पूरन पव जल उदरन हारा।

देवगंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह लय उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देवगंधारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांध।

मंगल गाया ठाकुर का जयकारे, कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार। इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा, अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन, मेरा सगल अंदेसरा गया रहाओ, हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया, कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया, पर उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया, कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर धरया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे, रहाओ सर्व पाप राख मुरारे, आगे पाछे अंति वारे, जब चितवो तब

दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस मोसे भी किस आराधी जो दिसते सो गाचे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आए पयो नानक गुरचरनी

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिसारे देव नदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहा बहु व्यंत अत बड़ो बारो हाँ नहीं अगूचा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा।

ओज असंख्या अनेक पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा, कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा। देव गंदारी महला पंजवा।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ब्रह्मा मुकुट पे शेर तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हौ तुम प्रमो ना पाई रविया रे रविया सर्वथान ज्यों बैसंत।

देव गंधारी महला पंजवा जानी न जाई ताकी गात रहाओ कह पेथारो हो कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध असाधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत ब्यंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अनुज कोही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब मेरा ताकी शरण आसर प्रभ नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्षों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साथ संग न

रीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने समझत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभन गुरु प्रसाद राग विहागड़ा चौक दे महला पन्या।

जन जे सब जग परमायो सगल कर्म कर नानक प्राणी चरण काहे चितलायो। राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। हर हर नाम से आई है मेरी जिंदड़ी है गुरुमुख नाम अमोले राम। हर रस बीजा हर मन प्यारा मन हर रस नाम से

मन सिंधियाला फल पाया हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम गुरमुख मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़ी मुख अमृत बैन अलाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विचुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज।

कोई हर सब आन मिलावे राम। हाँ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी, मन सिंदेरा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हाँ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल उदासे राम।

राज बिहागड़ा महला चौथा। अमृत हौ हर नाम है मेरी जिंदड़ी है, अमृत गुरमत पाए राम। हौ में माया दिख है मेरी जिंदड़ी है, हर अमृत दिख ले जाए राम। मन सुखा हया होया मेरी जिंदड़ी है, हर हर नाम से आए राम। हर साज बड़े लिख पाया मेरी जिंदड़ी है, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदड़ी है, जो बालक लग दुध खीरे राम। हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी है, जो चात्रिक जल बिन तेरे राम। सतगुर सनी जाए पाओ मेरी जिंदड़ी है, गुण दसे हर प्रभ तेरे राम। जन नानक हर मिलाया मेरी जिंदड़ी है, कर वाजे शब्द कनेरे राम। मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी है, बिख बांधे हो मैं जाले राम। जो पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़ी है, त्यों मनमुख सब वस पाले राम। जो मोहे माया चित लाए मेरी जिंदड़ी है, से मनमुख मूर

हर मिलिया सुख सब जाए राम, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़ी, जन नानक हर गुण गाए राम। हम पापी बलवंतिया मेरी जिंदड़ी, पर द्रोही ठग माया राम। वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी, गुर पूरे गत नित पाया राम। गुर अमृत

हौ बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम आधारो राम, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए, बिख औजल तारन हारो राम, जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए, तिन संत जना जयकारो राम। नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए, सब दुख निवारण हारो राम। सारसना

तर्क पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आवे राम। पौन पानी दर्शन करो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम से

जो मनुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

जिनी एक मानू एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ कदाराम गुर सेविया गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंडाराम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छाराम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरदा मेरे हर प्रव तू जाने जो जिए कमाए राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है सब वेखे मन मुकुराई राम मन मुखा मोह

जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पाए अड़ा कर आए। राग बिहागरा महला पंजवां अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण अधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपर अपारा राम गोपाल।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

جن بداتا پایا نام راتے جیر داتے نت دن چڑھے سوایا رد سدھ نو ہر

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभ ते आए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अरप तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत हर

अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतित पावने बहु जोन प्रम से हारी बिन वंश नान।

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़ी। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर शरी

मन पर कीट न आया सहज न लगो पाओ शब्द साध न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख।

सतगुर कह तै पन ना करियो रहे अंक समाए। अन दिन सहसा कदी न चूके बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

माए पिसावे आप पकावे आप पांडे दे परोसे आपे ही बैठावे आपे जल आपे दे सिंगा आपे चुली परावे आपे संग

बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए सब किछ देखे तिसे का जिनकी आतन साज नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे साथ किया जदों आपे साथ किया बह करते तदों कुछ ना सेवक दिया तदों क्या को लेवे क्या को देवे जा अवर ना दूजा किया फिर आपे जगत उपाया करते दान सबना को दिया आपे सेव बनायन गुरमुख।

कहे कथे ना पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्मे किन ना पायो पौके मुए बिन लाए गुरु के शब्द मन तन सुजे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख दे रहे करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार दिख

चौथा बिन सतगुर सेवे जीते बंदना जेते कर्म कमाए बिन सतगुर सेवे थवर ना पावही मर जम्मे आवे जाए बिन सतगुर सेवे सिक्का बोलना नाम ना वसे मन आए नानक बिन सतगुर से

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है, हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या

सो सब कुछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी, सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी। सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे पा

पौड़ी। जा आप कृपाल होवे हर स्वामी, ता अपना नाउ हर आप जपावे है, आपे सतगुर मेल सुख देवे, अपना सेवक आप हर पावे,

तुर खसने का हुक्म पाया बिन सतगुर चेतिया न जाए। सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए। दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए। जन्म मरण का पौ गया जीवन पदवी पाए। नानक एहो मर्तबा किसनो दे जिसनो कृपा करे रजाए। पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए सियाना आपे मोनी वर्तदा आपे कथे ज्ञाना। कौड़ा किसे ना लग गई सबना ही पाना पुस्तक बर

जुगत सो पाए जिसनो गुरुमुख नाम प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सबको वसे पेखी जोग न होए। नानक ऐसा विरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

हर दिया सतगुर मोको हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खड़िया बिल्ला दिया तिना मैल न पाए दूजे पाए करू।

एक को सच वर्ष है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कीस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वडहंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

पत थक सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच

ए मन नाम निदान कूप आए, अपने गुर की मन लै रजाए, रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, करमे पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड़ पागी, जिन हर नाम से आया, गुर पर सादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे इक ठाए, हौ में विच सेवा ना हो वई, ता मन बिरखा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन्ने ता हर मिले, ता विच्चों हौ में जाए रहाओ, हौ में सब शरीर है, हौ में ओपत होए, हौ में वड़ा गुबार है, हौ में विच बुझ ना सके कोए, हौ में विच भगत ना हो वई, हुक्म ना बुझे आ जाए, हौ में विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हौ में गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे सच

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही हो क्यों मिला मेरी माया हो कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हो हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाणी हो क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

ते मैं गुण नाही हौ क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा सिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण।

क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हो सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नदर ना देखे हो क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सच सवरा हो जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का

हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा। गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के।

सित वेले मर जाए जियो मेरा, हर वेखन को सब कोई लोचे, सो वेखे जिस आप विखाले, जिसनो नजर करे मेरा प्यारा, सो हर हर सदा समाले, सो हर हर नाम सदा सदा समाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर ते तीर लिया, वडहंस महला पंजवा कर पहला इक ओंकार सतगुर प्रसाद, अस ऊंचा ता का दरबारा, अंत नहीं किसी।

रहाओ। लाख भगत जाको आरा दे, लाख पति सर कप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा। करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वढ़हंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जी वे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वढ़हंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को

तिन्हे तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी। इत उत देखो ओत तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता। नानक साधु देख मन राता। वडहंस महला पंजवा।

जल सल मैयल रहा पर पूरे निकट वसे नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा उवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभु कै निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला पंच

विस्मा रहाओ। तुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मण हुक्मे मरना, नाम तेरा मन तन आधारी, नानक दास बख्शीस तुम्हारी। वडहंस महला पंजवा कर दूजा इक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे, हो क्यों पाई गुरपूरे, जे तो खेल खिलाये बालक रह ना सके बिन खीरे। मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली, जे तो भोजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई, मैं मेलियो मित्र सुखदाता, ओह जी की मेरी सब वेदन जाने, नित सुनावे हर किया बाता। हों एक दिन तिस बिन रह ना सका, जो चात्रिक जल को बिल लाता। हों क्या गुण तेरे सार समाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उड़ीनी कंस को अमाली, सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा, एहो कापड़ तन ना सुखावई।

सब सिंगार बनाया अमाली, बिन फिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सो रहा समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली, तिचर मैं जाने।

सच तुन सच शब्द विचारा अन दिन सच सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विटों बल जाओ दासन दासा हुए।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहि समाए अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सच गुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यों पावे त्यों।

अधिकाई, काम क्रोध नित संतावे, वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय, राम नाम इस युग में दुर्लभ है, गुरुमत हर रस की जय, रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे, ता हर के गुण गावे, गुरुमति आपे आप पछाणे, ता निज कर वासा पावे, ए मन मेरे सदा रंग राते, सदा हर के गुण गाओ, हर निर्मल सदा सुखदाता, मन चिंदिया फल पाओ, हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई, पात्र डुबदा काड लिया साथी वड्याई, दिख से अमृत भय गुरमत बुद्ध पाई, अको परमल पये अंतर वासना समाई, मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए, पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए, मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया, हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया, मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया, नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया।

आई नाता सो प्रवान सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बई है भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया। नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया। सुख मन मैं आए वस्या जाम तै फुरमाया। नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया। ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया। वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना। मंदा किसे नाख झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप वजावना। जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना। जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना। सब उपायन आप आपे नजर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे। सब कोई मीठा मांग देखे। सब कोई मीठा मांग देखे। खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी। नाम तुल ना समतरे। नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुरक दे। सब उपायन आप आपे नदर करे। वडांस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना। सब उपाय आप आपे सर्व समाना। सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया। एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया। लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना। सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना। दुख गया सुख आए समाना। गावन सुरनर सुगड़ सुजाना। सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे। माया मोहे चेते नाही ऐला जन्म गवावे। एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना। तेरा वक्त सुहा

राजो ता तेरा सदा नहीं चले, एहो कभो ना जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे, जो ए सहज समावे। दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे। हों बलिहारी सदा होवा, एक तेरे नावे। जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे, कीरत करें स्वामी तेरे द्वारे।

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

काला सोने नक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया सोने की टाला, सोवन टाला कृष्ण माला, जपो तुसी सहेलियो जम द्वार ना हो खड़िया, सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

सतगुरु प्रसाद। अपने पिरके रंग रती मोइये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रही मोइये पिर रावे पाए प्यारे। सच्चे पाए प्यारी कंत सवारी, हर हर सियो निहो रचाया। आप गवाया ता पिर पाया, गुर के शब्द समाया। सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी। नानक सा तन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी। निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम। फिर रव रहा पर पूरे वेख हजूरे, जुग जुग एको जाता। तन बाली कोली फिर सहज रावे, मिलिया कर्म विदाता। जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे। नानक कामन सा फिर पावे, शब्दे रह हदूरे। सुहागणी जाए पूछो मुइये, जिनी विच्चों आप गवाया। फिर का हुक्म ना पायो मुइये, जिनी विच्चों आप ना गवाया। जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया, रंग स्यों रलिया माने। सदा रंग राती सहजे माती, अंदिन नाम वखाने। कामन वड पागी अंतर लिव लागी, हर का प्रेम सुभाया। नानक कामन सहजे राती, जिन सच सिगार बनाया। हौ मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाए, हर वर रावे सदा मुइये। निज कर वासा पाए, निज कर वासा पाए शब्द बजाए। सदा सुहागण नारी फिर रलियाला, जोगन बाला अंदिन कंक सवारी। हर वार सुहागो मस्तक पागो, सच्चे शब्द सुहाए। नानक कामन हर रंग राती, जां चले सतगुरु पाए। वडहंस महला तीजा, गुरुमुख सब

रावी जय हम दिन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे शब्द रस तीजे नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरले की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा ले परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम से आए मन वसाए बूजे गुर विचारा मन मुख खेती वणज कर थाके कृष्णा पुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे शब्द सुहाए हर व्यापार से जन लागे जिना मस्तक मणि वड पागो राम गुरमति मन निज कर वस्या सच्चे शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साज रते विचारी नाम बिना सब जग बोराना सब दे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरुमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावे मस्तक पागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा समाई स्वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वसे कोहे ना सके जम काल जियो काल जाल जम जोहे न साके साचे शब्द लिव लाए सदा सच रता मन

मन मेरिया अंतर तेरे निदान है, बाहर वक्त ना पाल, जो पावे सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई, मन मुख अंधले ज्ञान में होने दूजे पाए खुआई। बिन नावे को छूटे नाही सब बाजी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त न पाल। मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वा पारा, सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा, अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा। नामे नौ निद पाई मन मुख माया मोह व्यापे, दुख संतापे दूजे पत गवाई। हौ मैं मार सच शब्द समाणे सच रते अधिकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सतगुर सेवन अपना से जन वडपागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया, मत निचल अत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया। एक कामन हितकारी माया मोह प्यारी, मन मुख सोए रहे अपागे, नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडबागे। वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ बन जिए, सतगुर दिया बुझाई राम। लाहा लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिस आप बुझाए। लाहा भगत है सारे बिन भगती सुख ना होई, दूजे पत खोई।

कोई पढ़ पढ़ पंडित बात बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगध गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया।

मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखी है होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बख्शे सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम वनजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है केवा पारा हों मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परिया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि जय नानक नाम रते से निर्मल होर हों मैं मैल परी जय पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ फूक दे किस पे करें पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाए बिख का कीड़ा बिख्यों लागा बिष्टा माय समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोई न मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मुए गावारा माया मोह मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच परे पंडारा गुरमुख होवे सोई बूजे सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिले होर

माया मोहि खुआई। ए जगत जलता देख के पज पे हर शरणाई राम, अरदास करी गुर पूरे आगे रख ले वो देहो वडाई राम, रख ले वो शरणाई हर नाम वडाई, तुद जेवड अवर ना दाता सेवा लागे सेवड पागे जुग जुग एको जाता, जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई, नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर शरणाई, जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम, अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम, आपे दे बुझाई अवर ना पाई, गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा, साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया।

दृढ़ाए। जप हर हर नाम विगसे राम, जप हर हर नाम कमल प्रगासे, हर नाम नवंग निध पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट सरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए।

गुरु जेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हाँ गुरु बिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम।

हर आपे मिले करे सो होई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे अवर न करना जाए, बहुत स्याणप लया न जाए, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोए। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर

फल जन्म किन बिरछा गवाया, ते सापक मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्स न करियो, जिनी हर हर नाम न प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया, हम चात्रिक दीन हर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वड हंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल।

कलग हत जीना जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते दुख लाखे पाप सुन तापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनुत्तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर गुण।

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

हर नाम गत नित जानिया, सब जन्म सुख लियो किया करता, हर राम नाम बखानिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक।

आज सबके आया मंगल गाया, चूके मनो आदेशा, सो प्रभ पाया कथ न जाया, सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना, प्रभ हर तन सहजे जीता, कहो नानक तिस जन बलिहारी, तेरा दान सबनी है लीता, कहो पाना तात्रिक अघाए राम।

जिन हर हर रसना पनया राम सो सह सुहेले गुणे अमोले जगत उधारण आए तह बोह सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए। जिन को कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक किसको।

ठाकुर माने से प्रधाने हर से रंग राते हर रसय अघाए सह समाये कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सत कुरबाने श्लोक।

ताख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जग जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साईं।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये। राम मन इच पाये प्रभु आये मिटे जम के त्रासा। गोविंद गाया।

आप निरालम तंदे बांधी कर हुकम छडावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

सातन रंड न कबू बैसई, ना कदे होवे सोग, ना कदे होवे सोग अंदिन रस पोग। सातन मैल समाणी

वडहंस है, सच नाम उर्धार, सत संग्रह है, सद सत रहे, सच्चे नाम प्यार, सदा निर्मल मैल न लग गई, नदर की थी करतार, नानक हो।

जिक्र गुरमुख शब्द ना लाग जाए, सतगुर सेवे नाम मन वसे विचों परम पौ पावे। जे हा सतगुर नो जाने तेहो होवे, ता सच नाम लिव लागे, नानक नाम मिले।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर

दाता। हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता। हर नाम में जेवड कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता। हर नाम दिया।

सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई,

राम नाम लिव लाए, नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर से सुख नाही।

आज न आया संध्या तर्पण करें गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुरु सेवे सोवड़ भागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए यो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सत

कोई बातें बात रखी हथ अपने जिस पावे किस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगे जाते से सूरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुलाना रहा त्रै गुण माया परम पुलाया हों मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उभो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वरते सगल संसारा हों मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

पुरठ महला चौथा हर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद आपे आप वर्तदा प्यारा आपे आप अपाहो बंजारा जग आप है प्यारा आपे साचा साहो आपे वणज वपारिया प्यारा आपे सच विसाहो जप मन हर हर नाम सलाहा गुर कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उज्जर पायदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपायदा प्यारा सिर आपे तंदड़ै लाहो आप कराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाहो आपे पक्षण पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेखे पाक साहो आपे आप दिवाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे तह तेरी होए मेरे मन में हर दिन अवर न कोए सतगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिजक समाहदा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे अलख न लखिए प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर न कोए सब कट आपे भोग वे प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए नानक गुप्त वर्तदा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोरठ महला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे था पुथापे आपे वेख विकसदा प्यारा कर चोज वेखे प्रभ आपे आपे वंशन सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रस त्रापे अमृत नाम महा रस मीठा गुर शब्दी चख जापे रहाओ आपे तीरथ तुलहरा प्यारा आप करे प्रभ आपे आपे जाल बतायदा प्यारा सब जग मछली हर आपे आप अपुल ना पुलई प्यारा अवर न दूजा जापे आपे सिंगी नाद है प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरुष है प्यारा आपे ही सब तापे आपे सदगुर आप है चेला उपदेश करे प्रभापे आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलाहदा प्यारा जन नानक हर रस त्रापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे साहो आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुर पूरे मीठा लाया रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वर्तदा प्यारा जल माटी बंद रखाया आपे ही पौ पाएंदा प्यारा बन बकरी सिर हडाया आपे काष्ट आप हर प्यारा विच काष्ट अग्न रखाया आपे ही आप वर्तदा प्यारा तै अग्न ना सके जलाया आपे मार जीवाएंदा प्यारा साह लेंदे सब लवाया
ਆਪੇ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਘਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਆਪ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਉਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਜੰਤੀ ਜੰਤ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਜਹਿ ਵਜਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਨਾਣ, ਆਪ ਨਿਤਾਣਿਆ ਤਾਣ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ, ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਉ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਾਏਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਸਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ। ਆਪੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦਾਨ, ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪ ਦਿਵਾਵੈ।

आपे शब्द समाहा, आपे लेखन आप लिखारी, आपे लेख लिखाहा। मेरे मन जप राम नाम ओ माहा, अंदिन अंध होवे वडपागी, ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा, बन आपे गऊ चराहा, आपे सावल सुंदरा प्यारा, आपे वंश बजाहा। कोवलिया पीड़ आप मराएदा प्यारा, कर बालक रूप पचाहा, आप अखाड़ा पाएदा प्यारा, कर वेखे आप चोजाहा, कर बालक रूप उपाएदा प्यारा, चंदूर कंस के समाराहा। आपे ही बल आप है प्यारा, बल पन्ने मूरख मुगदाहा, सब आपे जगत उपाएदा प्यारा।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंचपदा अचर चरै।

आशिद होई सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर तां श्रम काटिया जाए। मेरे गोविंद अपने जन को देह वढाई, गुरमत राम नाम परगासो सदा रहूं शरण।

सब किस हुए गुर पूरे जानाया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाये भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई

बुझाई सेवो साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्द अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुराई ओत पराद अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही। बूढ़क मोह गृह अंग कूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकि तै आस पुजाई। दास अपने को तू विसरै नाही, चरण सूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुखदाते स्वामी। सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई। कहो नानक जिस करे दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी।

खुद ना होइए काहू जतना ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत ना ओलिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना कर तू धारा कहु नानक गुर बिन नहीं करिए एह पूरन सत बिचारा। सूरत महला पंजवा। खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा किलबिक काटे निमख अरादया गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बानी। रहाओ मुक्त फुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाये।

साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सूरत महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाते प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम पोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बने आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सूरत महला पंजवा कर दूजा चौपदे

ए मन तै को देखा, सुनमीता हूँ तेरी शरणाई आया, प्रभु मिलो देव उपदेशा। मान न कीजै शरण परी जय, करे सुफला मनाय, सुनमीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय, क्यों दर्शन हर जियो पाई है। कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के, हर नामा है मीठा, जन नानक को गुर कृपा पारी, सब अकुल निरंजन डीठा। सोरठ महला पंजवा, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, फर्ज जिया का दाता रे, प्रतपाले नित सार समाले, इस गुण नहीं मूर्ख जाता रे, हर और

सागर सर्व घटाबर पूरी रे, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूरख जानिया दूरी रे। हर बेअंत हों मित कर वर्णो, क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती।

गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्भास न करिया रे। सूरठ महला पंजवा जिना बात को बहुत संदेश रो ते

एक रतन मोको गुरदीना, मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर न हुआ। भगत पंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा, चरण कमल स्यो जाका मन लीना। सेजन कृत अभाई, गुण अमोल जिस हृदय न वस्या, ते नर कृष्ण त्रिपाई। हर आराधे अरोग अनुदाई, जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई। रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ सरने। जे नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मैं गणने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए, ते महा आनंद रस करया।

न जाने तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पाव के सागर अफा

कृष्ण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब कौने किन में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती छड़

तो अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रे न तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर बिद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु करेत मुगद कह स्रोते हर नामा

मन पावे उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द क्रम सागा कहो नानक ताके पूर करमा जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु न पाये पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सभा से आई है। सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाओ मृग तृष्णा अर सुपन मनोरथ ताकि कछ न गढ़ाई राम भजन बिन

नाम किसी प्रभ पाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ मैला पंजवा गुण गावो पूरन अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरे गुर मेट्यो कर्म अंधेरा पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अघाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाए जब तक समझम ज्ञान पत बेसा जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगले काफी जम की पाता पहु नानक प्रभ कृपा तारी मन तन पे बिगासा सूरठ मैला संजमा करण करावण हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नान प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो।

सोरठ महला पंजवा। माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो कर माने। मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किछ करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ। जेवा स्वाद लोग मद मातो, उपजे अनक बिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया, हों मैं बंधन के पारा। देखिवार अनक पर्दे में, परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे, तब कौन पर्दा तेरा ठाके। दीन दयाल पूरन दुख पंजन, तुम बिन ओट न खाई, काड ले हो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सूरत महला पंजवा। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी, जप अनद करो नित पाणी। हर आचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाये, हर विसर न कभू जाय रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे, सो जन निर्मल थीवे। विघ्न विनाशन सब दुखमासन, गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी, अन दिन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को, सो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा। पंच पदा। बिन से मोह मेरा और तेरा, बिन से अपनी सारी, संतो यहाँ बताओ कारी, जित हो में गर्भ निवारी रहाओ। सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या, होवा सगल रे नारी।

समायो सोरत महला पंजवा जाऊ कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर नाथ।

जब जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बरतन।

फेरो बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण शरण।

सांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई, हर नाम निधान नानक जन पाया सगली इच्छ पुजाई। सोरठ महला पंजवां गुर के चरण बसे रिद

सुधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हार।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे।

राख ले हो पाई मेरे को, तब आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने खत्म परोसा, कहो नानक गुर पूरा फेटो, मिट्यो सगले अंदेसा। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना, सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिर

नानक सदगुरबान। सोरठ महला पंजवां, दुर्त गवाया हर प्रभ आपे, सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, अपना बिरज संवारिया। होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। पतित उदाहरण सतगुरु मेरा, मोहि तिसका परवासा, बख्श ले सब सत्य।

कारज सगल तवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, पाप उतारिया सतगुर पूरे, अपनी कृपा धार। रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच शब्द सत पाखिया। सोरठ महला पंजवा, अये कृपाल स्वामी मेरे, तिथा तै दरबार, सतगुर ताप गवाया

हट तार, हर के चरण हृदय उद्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिक काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

पाई सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ पे दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्व निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुर रखवाला होआ पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ साप दया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाए हलत पलत प्रभ दोवें सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेवक की आपे राखे पूरन पई बढ़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे जो बारिक पित माता सोरठ महला पंजवा करती जा चौपदे इक्को अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा।

गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराछत लाथे, मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा, जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकुट द्वारा, सब सृष्ट करे जय

कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याय। अनदिन सुकृत करिय रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वडभागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी सिसलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

बिघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रस।

सास सास प्रभ त्याये, हर मंगल नानक दाइये। सोरठ महला पंजवा। सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा। पूरे गुर कृपा तारी, तागत पई हमारी। हर की प्रेम

तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द पर

अपने दास का सदा रखवाला, पर कृपा अपने कर राखे, मात पिता ज्यों पाला रहाओ। वड पागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवे से वड पागा।

कर कृपा अंतर जामी, दास नानक शरण स्वामी। सोरठ मैला पंजवा, गुरपुरे चरनी लाया, हर संग सहाई पाया, जह जाये ता सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाय रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा, पतित पुनीत कर दीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला, हर दिन रहन

पूरी प्रभ रब रहा पर पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म वित्तों कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद कारे विघ्न ना लागे तिल का कोई कार्य सगल सवारे रहाओ मिर साधु दुर्मत खोए पतत पुनीत सब हुए रामदास सरोवर नाते सब लाते पाप कमाते गुण गोविंद नित गाय साध संग मिल त्याय मन बाचत फल पाए गुर पूरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृपाल

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ महला पंजवा

बालक पाए सवाई लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाये कहने कतन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ पए आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे जग जीवन नाम

आपे दाता आपे भुगता, क्या इन जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाने, कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात न काई रहाओ, करते पुरख काल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दया।

जन नानक एक से आया सर्व फला पुन पाया। सूरठ महला पंजवां करतीजा दो पदे

हर के नाम की वडियाई, आस पहर गुण गाई, गुरपूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत।

सहज सुभाए मिले गोपाला, नानक साथ पति ने सोरठ महला पंजवा। गुर का सब रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे।

सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सर से होए, हर हर नाम ते आई रहाओ। जो मंगे सो लेवे, प्रभ अपनिया संता देवे, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुवाखिया। सोरठ महला पंजवा, सोई कराए जो तुद भावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे, हम बारिक तौ शरणाई, प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाप रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया कृपाला रहाओ। प्रभु करण कारण समराथा, हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कार्य आए।

हर आराध सबो किछ पाये, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जिस वड भाग।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म।

वाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभु सतगुरु दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके।

आओ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम।

धारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सो

कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पे साथी।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे को न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूरब लिखिया पाया। सोरठ महला।

संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया। रहाओ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी, नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे, क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाये, जित सिमरन दर गए मुख उजल, सदा सदा सुख पाये। रहाओ ज्यो कामी काम लुभावे, त्यों हर दास हर जस भावे, ज्यो माता

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वडिआई।

दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाए सोरठ महला पंजवां।

गुरपुर लै तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला संतो प्रभ मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुरपुरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक

तेरा संतां परवासा तेरा नानक प्रभ सरनाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवां आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथू नाही। साचे साहिब सिओ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवां नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साख है गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरनी पाई है दर्शन पेटत होत आनंदा।

तिसें प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखें जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखें। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे, बुरे पले हम थारे रहाओ। सुनी पुकार समरथ स्वामी, बंधन काट सवारे। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने, सेवक सब दरबारे। अंगीकार कियो प्रभ अपने, पावनिध पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिध। पूरन खसम हमारे रहाओ, आओ बैठ आदर सब थाई। ऊन न कतहु बाता, भगत सिर पाओ दियो जने अपने। प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो। अर गाओ रसना गीत रहाओ, कर साध संगत सिमर।

जब ही निरतन देखियो नर को संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन में कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखे।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अप

आगी शब्द मन वेदिया मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हृदय शब्द सदा पैर रचिया गुर की कार कमावे। एको चेत मनुआ ना डोले पावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसे सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूझी तुझे बुझाई। आस निराश रह बैरागी निज कर तारी लाई।

जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सो कर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से ही साध जान जो गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिय पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यों चलाए त्यों चाल है पाई।

को करे चित्राई। एक परम पुलाए एक पगती राते, तेरा खेल अपारा जित तुद लाए, तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा। सेवा करी जे किछ होवे, अपना जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा। गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया, गुण में ज्ञान त्यानं, नाम मन पावे कह कहावे तत्तो तत्व खानं। शबद गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानं, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानं। सोरठ महला पहला तित्त की, आशा मनसा बंदनी पाई, करम तरम बंदकारी, पाप पुन जग जाया पाई, बिनसे नाम विसारी, एह माया जग मोहनी पाई, करम सबे वेकारी, सुन पंडित कर्माकारी, जित करम सुख उपजै पाई, सो आत्म तत विचारी रहाओ, शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल न चूकी पाई, अंतर मैल विकारी, इन विद डूबी माकुरी भाई, ऊंडी सिर कै पारी, दुर्मत कणी विगूति पाई, दूजे पाए खुआई, बिन सतगुर नाम न पाई है पाई, बिन नाम में परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तत्थ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत, गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए, बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए, एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछू न जाए, गुर मिले पौ मन।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ महला पहला जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पाई है प्यारे।

बुरबिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाया पाए। जय पावे तें दे बैसर बोले मीठली पाई, साच कह पिर पाए बिर है बेदी सच वसी पाई। अधिक रही हर नाए सबको आखे अपना पाई, गुरते बूजे सुजान जो भी देश से उबरे पाई। शब्द सच्चा निशान ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई। नानक मिलन सुवाए सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम पुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई भगतां की पैज रख तू स्वामी। भगत तेरी शरणाई रहाओ भगतां नो जम जोहे ना साके, काल न नेड़े जाई केवल राम नाम मन वस्या, नामे ही मुक्त पाए। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई मन मुखा नो प्रतीत न आवे, अंतर लोभ सुआओ गुरमुख हृदय शब्द न भेजो, हर नाम न लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका लाओ, भगतां विच आप वरदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता, माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विदाता। हौ मैं मार मनसा मने समाणी गुर कै शब्द पछाता, अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा। गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारन हारा, ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा। बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मन मुख पौ के मुए बिल लाई, आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई, बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वस्या से दर साचे दर साचे सचियारा, ओना दी शोभा जुग जुग होई कोई न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा, सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई। सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चितराए हर जियो आपे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ, कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार। पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चाड़, मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए। आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए, हौ वारी हौ वारणे पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ। नाम निधान जिन दिता पाई गुरमत सहज समाओ, गुर बिन सहज ना उपजे पाई। पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार। जो सतगुर सेवे अपना पाई तिनके हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई। अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए,
गावो गावो रंग रात हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ, गुर की कार कमावणी पाई, आप छोड़ चित लाए।

मन हथ कार कमावनी पाई बिन नावे कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंग दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वैता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपा

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महल।

सफलियो सतगुर सेविया तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवै प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे गुरमुख मोए जीवंदे प्रवान है मन मुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखियै जे गुर कै शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुण तास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहु अतकणा पुत कलत ना सास कोई जास लोकां विच मुह काला होआ अंदर उब्बे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अन दिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मन मुख आप स्वार्थी कारज ना सकें सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुल आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हो मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहार।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही ना उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर संदे लाएंदा इक ना भगती लाए इक आप खुआएगा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हों मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा हों मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नौ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लह जावना जा पकड़ चलाया का।

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विन गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मनिया।

तीजा हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुर में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर।

करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

पाए, मन हठ सहज न बीजियो, उखा के अगे खाए, नाम निधान विसारिया दूजे लगा जाए, नानक गुरमुख मिले वडियाया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी।

गुरुमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरुमुख बुझी है जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरुमुख सखिया सिख गुरु मेला आया,

साधु संत चढ़ जाते हैं, इनके कर्म कर्म कार्य सब पवित्र हैं, जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनके पोते पुण्य हैं, से गुरुमुख सिख गुरु कह।

तन तन भाग तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाग तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया। तन तन

बिन सतगुरु नाओ न पाई बुझो कर विचार नानक पूरे पाग सतगुरु मिले सुख पाए जुग चार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मन मुख तृष्णा।

पाए नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने।

हौ मैं खपे खपाए अंतर लोभ मां गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाए नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

आपे सुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई, वडियाई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरुमुख नानक आराध्या, सब आखो तन तन तन गुर सोई सुध, राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओइले जारे ओइले गाडे, तेरी गत दोहु ना पाई, मन रे संसार अंध गहेरा, चौ दिस पसरे

पाई। दर्ब संच संच राजे मुए, गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सब बिगूते, देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कह कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

निज निरखत गत व्यवहारा राव कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता इक जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता।

पिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट

पानी। आपन बापे नहीं किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास पद

लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हौ बिन गांठे जाए पहुंचा, रविदास जपे राम नामा, मुझ जमस्यो नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत की खनकी।

ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

रहाओ, सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एक कहत है सच्चे परवदगारा। जो तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन वह सो किस पाये पूर्व लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

कोई जाए ना को चाखे ना को खाए, लोक पति ना पत होए, ता पत रह राखे जा सोए। जै देखा तेरे आसमाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुन उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, बिन नजरी नानक नहीं कोए। श्री मेला पहला नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए रहाओ। सच सिमरिय हो वे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार। तनाफरी मैला पहला जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखन होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, जित लग तरना।

संसार तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मैला पैरा, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी पूर बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप करे सगले कुलतारे, दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मलकोवे, पढ़या बूझे सो परवान, जिस सिर दरगे का निशान, तनाश्री मेला पहला हर तीजा।

सब का टब कानष्ट जग पृष्ट होए डूबता इव जग। कल में राम नाम सार अखी तमीते नाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ। आंट सेती नाक पकड़े सूझते तिन लो मगर पाछे कछ न सूझे ए पद्म अलो। खत्रिया ता कर्म छोड़िया मलेच्छ पाखिया गही सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गप रही अष्ट साज।

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आम लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति।

सहस मूरत नन्ना एक तोहि, सहस पद विमल नन एक पद गंद बिन, सहस पद गंद इव चलत मोहि, सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए, गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो किस पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम जिनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम वासा, त्रासरी मेला तीजा, कर दूजा चौक दे इको अंकार, सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सदबल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साथी बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एको सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, त्रासरी मैला तीजा, हर नाम तन निर्मल अस अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब दिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची परत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप मुख

जाने। शब्द मिले प्रीतम सदा त्याए, साथ नाम वड्याई पाए। आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए। गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए। तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए। आवे जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज विगोई। मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई। गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई।

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हौं मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हौं मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का तन बहुत अभिमान, अहंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सच सोई। आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राजना श्री महला तीजा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो, करण कारण

जो हर सेवै संत भगत तिन के सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी, हर गुण कहे ना सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी। रहा जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी, जो कंचन बै संतर पायो मल पाटी कटक उतारी। हर हर जपन जतो दिन राती, जप हर हर हर उधारी, हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरुष अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तना श्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जपियो, तिनका दुख परम पौ पागी, अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मित कह न सके, प्रभ हम क्यों कर मिले अतागी। हर प्रभ स्वामी कृपा धारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभु, हम हर कथा कथागी। तना श्री मेरा चौथा, हर का संत सतगुरु सतपुरखा, जो बोले हर हर वाणी, जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम तिसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमक पल, सब के लिए पाप लह जानी। रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरुष वडानी, तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वड्डे पाग वड ऊचे, तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तना श्री मैला चौथा।